الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: गद्दी की जगह मार गया
1: ना। अभी आप लोगों को कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, उस पर अमल नहीं करना
0: जी,
1: अपनी जिंदगी जीनी। तो अपनी बारी आके आप कहते हैं लोग क्या कहेंगे।
0: कल्चरल चीज है ना सर, क्या हो गया, मैं पाकिस्तानी तो हूँ ना बाय नेचर, वापस मुड़ के थे समझाना सारे नु, लेकिन करना उसके बराक्स है।
1: नहीं तो ये इसको दोगलापन नहीं कहते
0: जी,
1: दोगलापन
0: नहीं, इसको चवलपुना कहते हैं।
1: बार
0: बार बोल के क्यों कह रहे हो।
1: इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, कहते ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो दिल को चीर के निकल।
0: हाय हाय हाय हाय, वो फिर दिल ही टा दे, नहीं तिल कट दे,
1: क्योंकि बाबा फूका सच तो किसी नूं पसंद ही नहीं ना है।
0: सच वाकई किसी साडे कल्चर फिर किसी नूं नहीं पसंद, चुभदा ना चुभदा।
1: अच्छा झूठ मारो ना, मैं जनाब बड़ा खड़पैंच हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं यूं हूँ, दिल चाहे और इत्थे जिम्मेदारां टैंटा साफ कर
0: दे। इसी तरह होंदा है ना
1: जी,
0: ते ग्रीन कार्ड वाले जिहड़े जड़े बेचारे आए ने उन्हां दा वी अज नूं शाउट आउट दे दे, एक बेचारे जिहड़े आए ने कुछ
1: जी,
0: कई मर्तबा हमारे से इस तरह हुआ है कि उन्होंने पीछे बैक में जो है ना अपने वालदैन को ये कहा है, महंगी महंगी गाड़ियों के साथ पार्किंग में खड़ी महंगी गाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचा के पाकिस्तान भेज के, तो ऐ पप्पू बच्चा माँ दा सच्चा बन के बैठे होंगे ने, लेकिन सच में जो यहाँ उनके साथ हो रहा होता है वो तो किसी को वो नहीं बताते इसीलिए। और सबसे दर्दनाक उनकी जो वो है ना सेंटेंस उनके मुँह से जो निकल रहा है ना वो ये है कि चलो पिछे वाले खुश रह जाओ, असी तो इतने जलील हो ही गए।
1: हकीकत है बाबा फूका, मैं भी
0: तो ग्रीन कार्ड वाले यंगस्टरों के लिए मेरी तरफ से शाउट आउट है कि उन्होंने ये हिम्मत की कि वो यहाँ आए और उन्होंने मेहनत करके जो भी आया, लेकिन बात वही है ना, अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपनी जिंदगी अपने पीछे वालों के लिए कुर्बान कर रहे हो। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे,
1: मैं ना एक बंदे को जानता हूँ जो पाकिस्तान जब यहाँ से गया ना, यहाँ पे वो देखें सबसे पहले कि काम में कोई मना नहीं है, यानी कोई भी आप काम करते हैं, हक हलाल का रिज़्क़ कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सारे आंखों पे। लेकिन
0: बिल्कुल
1: बाबा फूका वो ना यहाँ पे किचन में ना बर्तन धोते थे रेस्टोरेंट में, पाकिस्तान जब लैंड हुए ना जनाब पाहिरा ने चिट्टा काटन
0: दा सूट माया लगी वीरो ते क्या रहा पहुंचे की गल ते।
1: अच्छा जनाब सोने
0: गुठियां पाईया
1: गले में चेन
0: या
1: थले चमकदा लिश्कदा की बूट बिल्कुल
0: ऐसे हट हो रहे ऐसे यूरोप विच।
1: अच्छा वहाँ पे किसी ने पूछा कि जी आप क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं ते वहाँ पे जो है ना वो सुपरवाइजर लगा हूँ।
0: वाह बर्तना था स्प्रे मारा था सुपरवाइजर।
1: अच्छा खैर वो जनाब, और जो उनके साथ होते हैं ना ये जो 53% जो फेल हुए हैं, ठीक है ये उनके साथ के जो है ना क्लास फेलो होते हैं। अच्छा वो कहते हैं यार ऐ बंदा अगर वहाँ डेनमार्क में जाके सुपरवाइजर बन सकता है तो मेरी नली वक्ती है।
0: बिल्कुल
1: नली जो है ना वो नाक बहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो भी फिर हिर्स करके ना अपने माँ बाप को किसी तरीके से तंग करते हैं,
0: करते हैं
1: तो फिर जमीनें बेचते हैं, माँ
0: बाप अपना नुकसान करते हैं,
1: जेवर बेचते हैं,
0: कर्जे
1: लेते हैं, फिर जनाब डंकी लगाते हैं।
0: बिल्कुल
1: कोई गरीब तो जो है वहाँ पे पानी में समंदर में डूब के मर जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो कोई जो है पहुंच जाते हैं, फिर उनका जो हाल होता है। फिर बाबा फूका साहब जो हम लोग यहाँ पे सेटल हैं ना, जिनके बिजनेस हैं, जिनके रेस्टोरेंट हैं, फिर जो हम उन गरीब
0: के साथ जो जाती करते हैं
1: तनख्वाह नहीं देते
0: वो फायदा उठाते हैं हम उनका। और यहाँ पे भी हमारे जो है ना इन लोगों को थोड़ी सी अकल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो इस चीज़ का बहुत फायदा उठाते हैं कि ये एक मजबूर बंदा है, उसकी मजबूरी का वो इतना फायदा उठाते हैं, लो वेज पे उससे काम कराते हैं 12-12, 13-13 घंटे। मैंने यहाँ तक कि खुद एक रेस्टोरेंट पर काम किया है जहाँ पे मैंने देखा है कि उनका वर्कर, उसकी इतनी बुरी हालत थी कि उसने अपने सर पे परना बांधा हुआ था, इतना शदीद उसको सर दर्द था, और उसने आके अपने बॉस के आगे हाथ जोड़ के कहा कि यार मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे घर जाने दो। तो उसके बॉस ने उसके कमर पे ऐसे हाथ मार के उसको वापस किचन में भेज के जा कहता था पुत्र जा मेरा पुत्र काम कर बाद में देखी जाएगी तेरे सिर दे दर्द
1: नहीं। ये तो
0: इस किस्म की ज्यादतियां वो लोग यहां सह रहे
1: हैं। अब बाबा फूका साहब आप रेस्टोरेंट में जो है ना वो बर्तन मारने की जॉब करनी है,
0: मैंने क्यों, मैं क्यों करनी, मेरी गद्दी लगी।
1: मैं एक मिसाल दे रहा
0: हूं। अच्छा सॉरी, ऐ फिर क्लियर करया करो ना पीरो, तुसी मेरी गद्दी टा आ रहे हो।
1: अच्छा जब आपने वहां पे जॉब करने जाना है तो वो कहते हैं जी आपकी हम हफ्ता जो है ना वो ट्राई लेंगे कि आप बर्तन सही तुम मांजते हैं कि नहीं मांजते।
0: ओ फ्री में काम जो कराना चाहते हैं।
1: बाबा फुगा
0: क्या पहुंच गया ना, मैं पहुंचे आया बंदा तो अंदर से पीरो फिर शक कर दे।

0: ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ
1: ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
0: ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ
1: ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੂਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਏਗੀ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੂਕ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਨੀ
0: ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸਾਹਿਬ
1: ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
0: ਇਹ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ
1: ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ
0: ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
1: ਕੀ ਬਾਤ
0: ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ
1: ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ
0: ਆ ਮਜ਼ਾ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਾ
1: ਮੈਂ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਵਿਊਰ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
0: ਲਿਖਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ
1: ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ
0: ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਸਿਆਣੇ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ
1: ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਿਆ ਖੂਹ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਚ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਂ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੱਢਿਓ
0: ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ
1: ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸਕਰੀਨ
0: ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਫ੍ਰੀ ਵਕਤ ਮੈਂ ਫੈਂਟ ਯਾਨੀ ਜੋ ਬਖਾਲੀ ਬੋਤਲੇ
1: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ
0: ਹਾਏ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ
1: ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕੀ ਪਤਾ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੂੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਤੱਕੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸੌਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ
0: ਯਾਨੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੈਂਟ ਪਈ ਯਾਰ
0: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਕਚਰੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਡਾਲ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨਿਕਾਲਨੀ
1: ਦਿਹਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਪੀਰੋ
0: ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਮੋਤਬਰ ਅੰਕਲ
1: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
0: ਜਨਾਬ ਹਮਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਲੁਤਫ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਮਜ਼ਾ ਮੇ ਇਤਨਾ ਸੱਚ ਅੱਲਾਹ ਇਨਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ
1: ਆਮੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ
0: ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਪੀਰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਕੋ ਦੁਆ ਦੇ ਦੀ
1: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆਓਂ ਸੇ ਤੋ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕੋ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਰੀ
0: ਰਾਏ ਰਾਸ
1: ਪੇ ਲੈਣਗੇ ਸੋਰੀ
0: ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
1: ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਲਵਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ
0: ਬਾਬਾ
1: ਢਾ ਦੇ
0: ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਲੜਕੇ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ
1: ਤੇ
0: ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ
1: ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ
0: ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
1: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
0: ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਉਸ ਲੜਕੇ ਕੇ ਸਰ ਮੇ ਦਰਦ ਥਾ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਕਪੜਾ ਬੰਧਾ ਹੁਆ ਥਾ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਤੋ ਆਪਨੇ ਉਸ ਕੇ ਸਰ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾ ਦਰਦ
1: ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਆਪੂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ
0: ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਜੋ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਜੋ ਕੀ ਹੈ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਉਸਕਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਕੋ ਫਲ ਵੀ ਦੀ ਆਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੀ
1: ਹੈ ਦੇਖੇ ਨਾ
0: ਇਤਵਾਰ ਕੋ ਪੜੀ ਵੈਸਟਰੋ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਈਦ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਤੋ ਜਨਾਬ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤੇ ਹੈ
0: ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਰੇਡੀਓ ਲਗਾਇਆ ਲੋਕੋ ਕੋ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਕੋਈ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਬਾਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ तो मैंने कहा यार मुझे ना भूख लगी है, तो आज ईद का दिन है तो जरूर किसी ना किसी के घर ना खाना बना होगा और साथ में खीर भी होगी
1: माशाल्लाह के, जरूर
0: यकीन करो एक भजन आ गया थे खीर लेके।
1: वाह तुझे फिर बाबे तो ज्यादा खुश नसीब तुसी होए
0: जनाब,
1: क्या बात है,
0: है ना,
1: क्या बात है। लेकिन फिर पीरां दे पीर फिर सारी गल तुहानूं ते लभणी ना, बाबे दा दिल नवां नवां इत्थे ठिकाणा लग्गिआ
0: ਲਿਖ ਲੋ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪੀਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣ
1: नहीं मरवाने के लिए गाले, ये भी तो एक चीज है ना, अपने गले में पास वोट है कि जब आप किसी भी मुल्क में चल मारे, मुसलमान मुल्क में चले जाओ, खासतौर पाकिस्तान में, उन्होंने नहीं तकना सज्जे खब्बे बूथा कैसा या कि मैं कह रहा ये मेरी बेटी है इसे आप शादी कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास पासपोर्ट है इसको बाहर ले जाए।
0: ये नहीं पता है,
1: नहीं पता कैसे ऐसे बर्तन धोते हैं आप अगर किसी ने अपने सितारे मिलाने बाबा से रब्ता कर सकते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते मिलेंगे आपको।
0: कुंडली
1: बिलकुल आके गल करो, दसो बच्चा किस तरह का, किस टाइप की बच्ची तुम्हें चाहिए, मिला देवे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी काम में आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, अपना काम जो है ना आप खुले दिल से अच्छे तरीके और मेहनत से करें। मॉरल ये था इसका, ये जो हमारा था ना लोग क्या कहेंगे, उसको हम इख्तिताम पे जरा मौजू को करें, शुगल मेला अपनी जगह। किसी काम में आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, मेहनत करें और अपनी दिल लगा के काम करें, अल्लाह ताला हलाल की कमाई में इतनी बरकत डाले। दूसरा पैसे के पीछे भागना अपना है ना छोड़ें, पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके पीछे भागना छोड़ें, आप अपने आप को काबिल बनाएं कि काबिलियत आपके पीछे आए। करो मैं टह जाने कुर्सी, अपने आप को काबिल बनाए ताकि काबिलियत आपके पीछे आए, पैसा अल्लाह ताला खुद दे दे। बिल्कुल होनी चाहिए, और जो काम करे दिल लगा के अच्छे तरीके से करे, देखे अल्लाह ताला आपके कमाई में, आपके घर में और सब चीज़ों में खुद ब खुद बरकत डाल देगा। हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, 2000 की अच्छे भले पैसे कमा रहे होते हैं, 2000 और किसी ने देते तो उसे चले गए, फिर जलाल तला दसा वो।
0: जनाब जफर साहब मेरे वास्ते लिखते रजा साहब आप छोटे जे बाबा राय, यानी जनाब जफर अवान साहब भाई शुक्रिया आपका।
1: आप छोटे
0: जी,
1: तुझे तो पीर ना तो पीर हो,
0: वही कह रहे ना कि तुझे छोटे नहीं है,
1: यानी गल की थी जफर साहब, ठोको ठोको ठोको पीर ना तो पीर, साढ़े तीस साल गिरा भी आ रही है रेडियो रवो शुवारमे खवाने की तौफीक दवे, डोनेशन करो बाबे की गद्दी सजाओ, कोई फूल फूल अगरबत्ती नहीं आई इस बार पीरो, मैं पिछले बार वैसे मंगी सी, अगरबत्ती लेकिन रहने दो अग लग जानी है बाबा साड़ जे गद्दी किसी ने लैनी है बाद, लेकिन मेरे आला काम नहीं कर सकते, तस्बीह एक ही फिरदी है, फिर दिल भी फिरदा है, ठुमके भी फिर, सॉरी
0: वैसे ये हमने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि हम जो अपने शो में जो है ना वो गाने भी सुनाया करेंगे,
1: बिल्कुल सुनाया करेंगे,
0: लेकिन हमारी जो है ना वो एक थोड़ी सी क्या कहते हैं उसका मजबूरी है,
1: मजबूरी
0: मसला
1: इतना तो आपको पता है ना पीरो, इतना तो आपको पता
0: है
1: आप नकली है तो मेरा के कॉपीराइट बाबे की जो है ना ये फजूल बकवास सुन ले वो ज्यादा सॉरी गलत हो गया मेरी मतलब एजुकेशनल बातें सुन ले मेरी
0: मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोग आपको शवारमा इसलिए नहीं भेजते ये जो आपका फिल्टर नहीं है ना टाटे मस्जिद टाटे मंदिर
1: और पीरो सत्तर वाली आज शेर कह देते यार बस हो गए
0: नहीं मैं कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों को ये याद हो जाए
1: सर फिल्टर वाले जो है ना फिल्टर वाले जो ये कहते हैं अस्तीन का सांप जिसको कहते हैं जड़ाएंगे आगे करता है उस तो बेहतर फिल्टर वाला बंदा बगैर फिल्टर वाला बंदा होता है कम अज कम मुंह से गल करता है ना मेरा प्यो कहता है जन्नत नसीब करे कि जरा मुंह आगे चार गाला कट दे ना उदे ज्यादा यकीन कर जरा पिछू एंड
0: ना जरा मुंह दे आगे तरीफा कर जाए
1: नहीं नहीं उदे यकीन ना करो तौबा तौबा तौबा तौबा तौबा तौबा
0: वैसे आपको कभी किसी ने मक्खन में नलाया
1: मक्खन में क्या नलाया मैंने मसाला ला के नूद किया गया है तुम कि मक्खन मक्खन तो बड़ी दूर की चीज है पहले मसाला लाया फिर अनूद किया फिर उसके भी तलिया है तल के बाबा निकलिया फ्रेश फ्राइड मसाला वे थे
0: अच्छा जफर खान साहब लिखते हैं अगर आप यहाँ पे जल के राख हो गए आपका मजार बन गया तो वो कहते हैं मजार पे शेख रशीद साहब को बिठाएंगे ये शेख रशीद को आप जानते हैं या आपके
1: जी सर मलेदार है साडा
0: पिंडी देने
1: मलेदार है ना साडा लाल वेली साडी छत तो नजर आंदी है
0: माशाल्लाह
1: क्या बात है
0: तो उन्होंने भी बबे शेख रशीद ने भी वैसे मैं ना
1: बड़े वो पहले ये अपनी बात करने का तरीका तो ठीक कर ले वो अच्छा। फिर उदी गल करांगे
0: ओ ले मलक वही साहब कहते हैं बाबा जी मैंने भी शवारमा खाना है सानू लब्बे
1: सानू लब्बे नहीं तुसों उसको खाना
0: अच्छा वही साहब पता है क्या करें आप ना अपना ले आए साथ हमारा भी ले आए मिलके खाएंगे
1: ये तो बैठे 7 मील दूर
0: किथे बैठे
1: ये को ना दोबारा दसियो बाबा उन्हें पता लवांदा
0: ये जनाब इना दा नाम है मलक वही वलीद
1: मलक वलीद साहब
0: किथे बैठे
1: पाकिस्तान
0: अल्लाह ए मलक वलीद साहब क्या वाकई आप पाकिस्तान में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे हैं
1: जी पाकिस्तान से
0: पाकिस्तान से
1: बिल्कुल
0: नहीं मैं भी पाकिस्तान से
1: नहीं नहीं लेकिन ये फिजिकली पाकिस्तान बैठे हैं
0: फिजिकली
1: यस अल्लाह बाबे दी पहुंच
0: बाबे दी पहुंच
1: बाबे दी पहुंच मैं हूं इतने फोन करा तो काश वर्मा चला जाना मेरे घर नहीं आना
0: बाबा फूका तो पीर की भी हो गई जी आज
1: क्यों तुम्हें भी रगड़ दिता किसी
0: ने भाई जफर अमान ना हाथ हो गए
1: ओ साडा फिल्टर नहीं उन्हां दा भी कोई नहीं तुसी फिल्टर फिल्टर कह रहे हो ना के शेर सी दोबारा पढ़ो टादे मजे टादे मंदर
0: टादे जो कुछ टंदा है पर एक बंदे दा दिल ना टावी रब दिला च रहंदा
1: आ जफर साहब थोड़ा जा ख्याल कर लियो मते साडा शो ना बंद करा दे
0: ओ पता की कहंदे जे कहंदे ने रजा भाई ने 10 बार शेर पढ़ा है और एक बार हर बार का
1: अच्छा तुम इतनी देर तक गलत शेर पढ़ रहे हो
0: पता नहीं उन पता करना पड़ेगा
1: जफर साहब ने को सही शेर कमेंट कर दवण की है वो शायर है ना
0: ए जनाब ए बाबा जी तुसी ते बड़े पहुंचे हो वो मलक वलीद साहब लिख रहे हैं जी मैं पाकिस्तान से
1: मैंने कहा ना को सर तस्बीह है
0: अल्लाह
1: कनेक्शन बड़े दूर दूर जांदे जी तानू की पता
0: ए जफर अवान साहब किथे बैठे ने
1: जफर अवान साहब इथे
0: इथे डेनमार्क
1: अल्लाह इथे बैठे ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ ਫੁਸ ਪਾਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਆ
0: ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫੁੱਕਾ ਸਾਹਿਬ
1: ਇਜਾਜ਼ਤ
0: ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ
1: ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਸਾਮੀਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ आज का प्रोग्राम बाबा फूका दी बाबे फूके दिया फूका, और ये एक फूक मार दें कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं सुन रहे हैं जितने भी इस दुनिया में रहते हैं सब अमन अमान में रहें और उन खुशियां उनके घर में, और ये लोग क्या कहेंगे उससे जान छूट जाए।
1: आमीन।
0: ये जो हमने हमें अपने कल्चर में वो
1: अल्लाह ताला दायत दे जी सबको दायत, सबसे पहले हमें दायत दे बाद में उन सबको दे।
0: आमीन। और सामीन नाजरीन इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को जो है ना फिर लेके कभी आएंगे हफ्ते दो तक महीने तक लेकिन अनाउंस कर देंगे, और अगले इतवार तक के लिए इजाज़त देंगे। अगर कोई किसी को हमारी बात बुरी लगी हो तो हम माजरत चाहते हैं। ये हमारा पहला प्रोग्राम था बाबे फूके दिया फूका, और जिस तरह ये कमेंट्स आ रहे हैं जिस तरह मैसेज भी आए हैं तो उसमें लगता ये है कि लोग जो है इसको इंजॉय कर रहे हैं, और हम सब भी यही है कि इतवार का दिन है लोग हंसे
1: बिल्कुल
0: मजाक करें और कुछ बाबे फूके दिया जिया नसीबता ने ना कुछ कुछ सारियाँ नहीं मैं वो क्योंकि बेचामी
1: चवला छाड़ दे वो नसीबता सुन लो
0: बाबा जी फिल्टर
1: सॉरी सॉरी फिल्टर सॉरी
0: मैं बता रहा हूँ ना मैं जरा उसको क्या कहते हैं
1: सॉरी पीरो तोड़ी गल काट दे।
0: तो इनकी बातों पे अमल करें सोचें उन पे गौर करें तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें अपने गिर्द पेश का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद डेनमार्क पाइंदाबाद।
2: आप और हम वतन एक संग नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामेईन और नाज़रीन, रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी खुशो खुर्रम रहें, मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसबे मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नौयत के होंगे और इन सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए, तबसरा करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब मलिक नसर मलिक साहब मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, कोपेनहेगन में पिछले दो हफ्तों से बहुत ही छोटी छोटी खबरें जो हैं, मालूमाती खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कल दो बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई कोपेनहेगन में। एक जो मुजाहरा था वो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ था और उसका नाम था री माइग्रेशन। इसका मकसद ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनका ताल्लुक तीसरी दुनिया से है, ग्लोबल साउथ से है, उनको यहाँ से निकाला जाए, ख़ा वो रेफ्यूजी हैं ख़ा वो माइग्रेंट हैं। और ये जैसे आपको पता है, ये डेनिश हुकूमत जो है, डेनिश पीपल पार्टी के सरबराह मार्टिन मेसरश्मिट ने ये जो है शुरू किया था काम। लेकिन जो कल की डिमॉन्स्ट्रेशन थी उसमें बहुत से हुलीगन्स और मुसलमानों और गैर मुल्कियों से नफरत करने वाले नौजवान लोग, काले कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, कुछ अपने चेहरों को छुपाया हुआ था और कुछ उसमें जो है वो नाजी सलूट भी कर रहे थे। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन को जो है रोकने के लिए या उसके ख़िलाफ़ एक और डिमॉन्स्ट्रेशन भी की जो एंटी रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो जिसका बंदोबस्त किया था, और उसी जगह पे जहाँ पे ये दूसरे लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, पुलिस बहुत भारी उसमें थी और उन्होंने कुछ तस्वीर से ही पता चलता है कि उन्होंने जो मुसलमानों गैर मुल्कियों के हक़ में जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी, जो री इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ डिमॉन्स्ट्रेशन थी, उस पर कुछ लाठी वगैरह भी बरसाई, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन करते रहे। अब अजीब सी बात यह है कि डेनमार्क में हमारे वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर बड़े अरसे से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार करते रहे हैं। मॉडर्न मेसरश्मिट रोज़ाना अपनी जो है फेसबुक पे लिखते हैं, लेकिन कभी भी किसी वज़ीर ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अगर कोई मुसलमान कोई गलत बात करता है या कोई और बहस आती है तो वो हमेशा गैर मुल्कियों को, मुसलमानों को लताड़ने में लग जाते हैं। दूसरी खबर ये है कि गैर मुल्कियों की के हालात को बेहतर करने के लिए आज से 50-60 साल पहले काम शुरू हुआ था, जिसमें हमारे दोस्त उदय हामर जो हैं, जो मेलन फॉल्ट की सामिल में भी काम करते हैं, उन्होंने एक नई किताब लिखी है जो ये कहती है कि बजाय गैर मुल्कियों को गैर मुल्की कहा जाए, उनको को सिटीज़न कहा जाए, कि वो हमारे मुल्क में रहते हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, अक्सर ज़ुबान बोलते हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। तो हम वहाँ पे गए थे तो बहुत अच्छा रहा वो किताब जो है, उसमें मैंने भी एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है, ख़ास तौर पर जो सियासतदानों का जो कंट्रीब्यूशन है मुल्क में नफरत बढ़ाने के लिए उसके बारे में। तो ये दो खबरें जो हैं बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा चंद एक और ख़बरें जो हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। एक तो ये है कि बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था, अब उन्होंने एक बात की है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत ख़तरनाक है और इससे जो है हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए, और क्योंकि हो सकता है कि ये इंसानों को जो है रिप्लेस कर दे। यही बात एक बहुत मशहूर साइंसदान जो थे उन्होंने भी ये बात की थी। वाकई अब अगर बिल गेट्स ये कह रहे हैं तो फिर यह है कि साइंसदानों को और हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से अच्छी तरह यूज़ किया जाए, ना कि वो हमें यूज़ करे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक और ख़बर ये है कि मार्केट में एक ऐसे ग्लासेस आए हैं जिनमें कैमरा लगा हुआ है और नौजवान लोग उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने दोस्तों की फैमिली की ऐसी वीडियो बना के इंटरनेट पर डाल देते हैं जो नाज़ेबा होती है। और अब जो है किच डेनिश हुकूमत ये सोच रही है कि इस पर ख़ास तौर पर स्कूलों में इस पर जो है बैन लगाया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको ये समझ नहीं आती कि जब वो कोई चीज़ फेसबुक पर डालते हैं उससे दूसरे शख्स का जो है कितना ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता है और उसको कितने प्रॉब्लम पड़ जाते हैं। और दूसरे, जैसे आपको पता है कि नॉर्वे के हरदलजीज़ बादशाह किंग हारल्ड जो हैं वो 89 साल की उम्र में ओस्लो में जो है वो पिछले हफ्ते वफात पा गए। उनके जो उनकी फौजगी के बाद उनके जो बेटे हैं क्राउन प्रिंस हाकन, उन्होंने नॉर्वे की जो है बादशाह संभाल ली है। और पिछले हफ्ते एक और शख्सियत दुनिया से चली गई है, वो बहुत मशहूर कंट्री सिंगर डॉली पार्टन, जिसको सब आप लोग जानते हैं, जो जिन्होंने उनके बहुत मशहूर सॉन्ग जोलीन, 9 to 5 एंड आई विल ऑलवेज लव यू, वो हमने 70s-80s में सुना था उन सॉन्ग को, डांस भी किया था उन सॉन्ग्स पे, तो वो भी जो है फौत हो गई हैं। और साथ में बोस्नियन सर्ब जनरल रातको मलादिक, जिन्होंने बोस्निया में जेनोसाइड किया था बोस्निया मुसलमानों का, उनको बूचर ऑफ बोस्निया भी कहा जाता था, वो भी जो है काफ़ी वो जेल में थे क्योंकि हेग में उन पर मुकदमा हुआ था जेनोसाइड का, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो अब वो जो है वो भी जो है इस दुनिया से चले गए हैं, और सर्बिया ने उनको कोई उनकी तदफीन में कोई हिस्सा नहीं लिया, उनको जो है बिल्कुल अलग थे, उनकी तदफीन हुई है। और एक और ख़बर जिस पे जो काफ़ी बहस हो रही है डेनमार्क में, वो ये है कि कोपेनहेगन में जो मैरिड कपल हैं, कोपेनहेगन के इलाके में रहते हैं, उनमें डाइवोर्स का रिस्क बहुत बढ़ गया है। पहले जो था वो 0.9% था, अब वो 1.6% हो गया। अब इसकी वजह कुछ तो लोग ये कहते हैं कि कपल जो हैं वो दोनों काम करते हैं, अपनी अपनी उनकी लाइफस्टाइल होता है, तो उसकी वजह से उनमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से डाइवोर्स का रेट ख़ास तौर पे जो कोपेनहेगन के इलाके में लोग कहते हैं उनमें काफ़ी बढ़ गया है। डिजिटल फ्रॉड है डेनमार्क में, उसके बारे में भी रिपोर्ट आई है कि 2023 में एक सर्वे के मुताबिक 2800 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें लोगों ने इंटरनेट पर जाके लोगों से फ्रॉड करने की कोशिश की है, और वो एक साल के अंदर अंदर उसकी तादाद तकरीबन 7,800 के करीब हो गई है। इसका मकसद यह है कि तकरीबन 2,75,000 लोग जो हैं डेनमार्क में, उनको डिजिटल फ्रॉड लास्ट ईयर का सामना करना पड़ा है। तो हमारी ये गुजारिश होगी कि वो लोग जो इंटरनेट पर जाके चीज़ें ख़रीदते हैं या दवाइयाँ ख़रीदते हैं, उनको बहुत सोचना चाहिए कि इंटरनेट पर बहुत ही फ्रॉड हो रहा है। और उसमें तो कहीं भी ऐसा है कि बहुत मशहूर डॉक्टर्स के नाम से ऐसी वीडियो बनाई जा रही हैं जिसमें मुख्तलिफ जाली दवाइयाँ बेची जा रही हैं। उस पर भी प्लीज़ आप बहुत ख्याल रखें कि इंटरनेट पर जो ये कुछ हो रहा है इसमें इसको आप बहुत सोच समझ के जो है वो उसको इस्तेमाल करें। एक और चीज़ जो है बहुत तश्वीशनाक है वो ये है कि बच्चों में जो है तशद्दुद का कहत बढ़ गया है। बच्चे पहले तो एक दूसरे से बात करते थे, अब वो मार कुटाई जो है वो भी शुरू हो गई है, और ख़ास तौर पे 15 साल की उम्र से छोटे बच्चे। तो वो लोग जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं देखते हैं, हमारी उनसे ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों का खाल ख्याल रखें, छोटे बच्चे हैं, कि वो कहाँ जाते हैं, किन के साथ मिलते हैं, उनका जो है तौर तरीका क्या है, ताकि वो इन चीज़ों में वो नहीं पड़े। ہیلتھ کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی خبریں ہم آپ کو دے دیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا ہے فیک ڈاکٹرز یوٹیوب پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. تقریباً 100,000 کے قریب ویڈیو ہیں یوٹیوب کے اوپر. تو پلیز جب آپ یوٹیوب پہ جا کے کوئی دوائی وغیرہ خریدیں اس کا آپ پلیز خیال کریں, کیونکہ آپ کو جعلی دوائیاں بھی جو ہے وہ خریدیں گے آپ, اور آپ کے پیسے بھی جو ہے وہ ضائع چلے جائیں گے. ڈاکٹرز جو ہیں ڈنمارک کے, انہوں نے ایک سروے کیا ہے کہ ہمارے ان کے جو پیشنٹ ہیں وہ کئی دفعہ ڈاکٹرز کو سے جو بات کرتے ہیں تو ان پہ وہ بھروسہ نہیں کرتے. حالانکہ ڈنمارک کا محکمہ صحت جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل ہے اور ڈاکٹر بہت سوچ سمجھ کے دوائیاں دیتے ہیں, لیکن اب یہ جو ڈسٹینس بڑھ رہا ہے ڈاکٹرز اور ان کے جو مریض ہیں یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے. اسی طرح اور بھی جو آرٹیفیشیل میڈیسن ہے اس میں کافی ایڈورٹائزمنٹ جو ہیں وہ لوگ جو جن کے بال گر جاتے ہیں تو اس کے لیے کافی جو ہے ایڈورٹائز آتی ہیں, تو اس کے بارے میں بھی وہ لوگ ینگ لوگ خاص طور پہ ان کو محکمہ صحت نے جو ہے اس کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ غیر ممالک میں جا کے یہ جو ہے اپنے بالوں کا کوئی آپریشن وغیرہ نہیں کرائیں, کیوں اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور آخری خبر صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ کوئی سپر مارکیٹ سے کھانے خریدتے ہیں تو جو پروسیس کھانے ہیں جو ڈبوں والے کھانے ہیں جس میں, اس سے جو ہے پرہیز کریں, کیونکہ ڈبے والے کھانے جو ہیں وہ فریش کھانے کے مقابلے میں نہ تو اس میں پروٹین ہوتی ہے نہ ہی اس میں کوئی ایسی آپ کی جسم کی بہتری کے لیے کوئی چیز ہے. تو یہ چند چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. اب ہم چلتے ہیں جناب نصر ملک صاحب کی طرف. نصر صاحب السلام علیکم, کیا حال آپ کا؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
3: جی بالکل, آپ کو میری بھی آواز آ رہی ہوگی.
2: جی اب آ رہی ہے میں آپ کی آواز. تو تھوڑا سا ڈنمارک کے بارے میں تھوڑی سی بات خبروں پہ بات کر لیں.
3: جی
2: آپ کو جیسے پتا ہے کہ ڈنمارک کی حکومت نے بڑی کوشش کی ہے یورپی ممالک کو اکٹھا کرنے کی تاکہ ان کے ساتھ مل کے جو ہے تیسری دنیا میں ایک سینٹر بنایا جائے جہاں سے یہاں پہ لوگوں کو یہاں سے جو ہے بھیج کے وہاں پہ رکھا جائے. تو ابھی دو دن پہلے 5 ممالک کے لوگ آئے تھے جنہوں نے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ ڈنمارک کی اس خواہش اور اس تجویز کی حمایت کرتے ہیں. تو اس میں جرمنی, نیدرلینڈ, آسٹریا اور گرین لینڈ بھی شامل ہیں. اس کے بارے میں آپ کہیں, یہ ڈنمارک جو ہے یہ اس چیز کو بنوا کے ہی چھوڑے گا, وہ اس کے پیچھے بہت پڑے ہوئے ہیں.
3: آسان تو یہی دکھائی دیتے ہیں کہ ڈنمارک اپنے اس موقع پر دستور قائم ہی نہیں بلکہ اس کی مزید اس میں وسعت لانے کے لیے وہ یورپی یونین کے دوسرے ممالک کو عملی طور پر اپنے ساتھ میں لانا چاہتا ہے.
2: جی,
3: تاکہ یہاں وہ لوگ جنہیں ملک بدر کیا جانا ہے اور وہ ملک بدری کے متوقع افراد کے مراکز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کسی ایسی جگہ پر بھیجا جائے, ایسے تیسرے ملک میں بھیجا جائے کہ وہ وہاں پر اپنا مستقبل جو ہے وہ دیکھنے سے کیا ہے. وہاں سے ان کو ان کے ملک میں واپس بھیجا جاتا ہے, جا سکتا ہے یا نہیں, اس کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا. فی الحال آثار یہ بتاتے ہیں کہ یہ 5 ممالک جن کا آپ نے ذکر کیا پچھلے ہفتے یہاں کوپنہیگن میں انہوں نے اپنی ڈینش عام پناہ وزیر جو ہے اس سے ملاقات کی ہے اور اس مسئلے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کے حل کو اقدامات کے عملی اعلان کیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈنمارک شاید اگلے ماہ پہلی کھیپ کے طور پر 100 کے قریب افراد کو کسی ایک افریقی ممالک میں یا کسی دنیا کے کسی اور ملک میں بھیجنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. وہ کون سا ملک ہوگا اس کا ابھی کچھ اظہار نہیں کیا گیا کھل کر, لیکن آپ کو پتا ہے کہ روانڈا کا ذکر اس معاملے میں بہت سامنے آتا رہا ہے. تو ایک تو قیاس یہ ہے کہ شاید یہ روانڈا میں جائے लेकिन ये किसी और मुल्क में भी भेजे जा सकते हैं।
2: अल्बानिया का नाम भी लिया जा रहा है,
3: अल्बानिया का नाम भी लिया जा रहा है, बल्कि वहाँ तो एक जेल की तैयारी भी की जा चुकी है।
2: हाँ, exactly.
3: और दूसरा, आपने बिल्कुल ये बजा कहा कि ये पांच ममालिक जो यहाँ इकट्ठे हुए डेनमार्क के साथ इस मामले पर मुलाकात के लिए, तो इसको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि ये पांच ममालिक है। इस वक्त डेनमार्क गैर मुल्कियों मुखालिफ अपनी सख्त तरीन पॉलिसियों की वजह से पूरे यूरोपीय यूनियन में सर फहरिस्त है, और देश कई एक यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपने यहाँ गैर मुल्कियों के मुतालिक और खास तौर पर मुसलमानों के बारे में पॉलिसियाँ सख्त बनाने के लिए डेनमार्क को एक संगमिल की हैसियत से देख रहे हैं।
2: अच्छा नसर साहब, एक बात मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको याद होगा पहले वो जिन लोगों को भेजना चाहते थे वो लोग थे जो यहाँ पे असालम के लिए आए, उन्होंने कोई जुर्म किया, लेकिन अब जो ये नया मॉडल है उसमें तो उन लोगों को भी भेजा वापस भेजना चाहते हैं जो यहाँ पे माइग्रेशन, उसको तो वो ऊल ऑली माइग्रेशन कहते हैं, लेकिन वो जो लोग यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आए हैं और उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, अब उनको भी ये उस मॉडल में उसको उनको जो है वापस भेजना चाहते हैं और उसको एक यूरोपियन प्रोजेक्ट के तौर पे पेश किया जा रहा है।
3: आपने बिल्कुल बजा कहा, ये शक भी शामिल है, लेकिन इसके लिए ये देखना अभी बाकी है।
2: अच्छा,
3: ये लोग जो यहाँ पर काम करने की गरज से आए लेकिन कुछ करते नहीं है, बल्कि सोशल सिक्योरिटी पर इन्हेसार करते हैं, इनसे किस तरह खलासी हासिल की जाए, और अगर ये हो गया तो ये बहुत बड़ा एक मसला होगा, क्योंकि आपने देखा है कि खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से जो लोग यहाँ पर आते हैं फर्जी वीजो पे या मुश्किल वीजो को तो बाद में वो मुश्किल होते हैं, ये उनके लिए मसला हो सकता है। उनके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्या सराहियाँ करना अच्छा नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल कोई पायदार दिखाई नहीं देता ऐसे लोगों के लिए। और अभी आपने देखा है कि डेनमार्क की ये मुतसबाना और खालिस्तन इमिग्रेंट के खिलाफ पॉलिसियाँ जो हैं ये इस हद तक मकबूल हो गई हैं कि डेनमार्क को एक ऐसा मुल्क अब कहा जा रहा है जो पूरी यूरोप की रहनुमाई कर रहा है कि वो अपने यहाँ गैर मुल्कियों से और अपने यहाँ आने वाले जो सियासी पनाहगार वगैरह होते हैं उनसे किस तरह छुटकारा हासिल कर सकता है। अभी आपने देखा है कि जर्मनी की एक रियासत में आज इंतखाबात हो रहे हैं और वहाँ उस DIF का पार्टी का जो सरबराह है उसने खुल कर कर डेनिश टेलीविजन पर कहा है कि उसने ये जो सख्त तरीन पॉलिसियाँ रखी हैं गैर मुल्कियों के मुतालिक और ख़ासतौर पर मुसलमानों के मुतालिक, तो मुसलमान बच्चों को स्कूलों में अलग से पढ़ाया जाएगा, उनको जर्मन बच्चों के साथ नहीं बैठाया जाएगा वगैरह वगैरह, तो उसने ये कहा है कि ये सब कुछ उसने डेनमार्क से हासिल किया है। देखना ये है कि डेनमार्क जो है जो किसी जमाने में और अब भी किसी हद तक इंसानियत का नंबरदार अपने आप को करार देता था, वो यक दम ये रुख क्यों बदल गया है और इसके असरात खुद यहाँ डेनमार्क में रहने वाले हम गैर मुस्लिमों और खासतौर पर हम मुसलमानों के मुताबिक क्या नतज पैदा करें।
2: अच्छा अच्छा, एक यहाँ पे मैं चीज़ पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो पांच मुल्क यहाँ पे इकट्ठे हुए थे उन्होंने इसको एक यूरोपियन प्रोजेक्ट किया, लेकिन फ्रांस के सदर और स्पेन के वज़ीर आज़म ने इस प्रोजेक्ट की बहुत सख्त मुखालफत की है और उन्होंने कहा कि ये यूरोपियन वैल्यू के साथ मिलते ही नहीं है कि हम लोगों को दूसरे ममालिक में ज़बरदस्ती भेजें, तो ये फिर यूरोपियन प्रोजेक्ट तो ना हुआ, ये तो डेनिश प्रोजेक्ट हो गया।
3: ये असल में डेनिश प्रोजेक्ट ही है, लेकिन इसके साथ जो चंद एक ममालिक मिलते जा रहे हैं उनकी तादाद में जिस तरह इजाफा हो रहा है या जिस तरह वो बगैर शमूलियत किए डेनिश इमिग्रेंट पॉलिसियों को सराहते हैं उससे ये अंदाजा होता है कि ये दो दिन का आपने जिक्र किया है इनकी आवाज़ जो है ये इतनी मौसर नहीं हो सकती जितनी के लिए बाकी ममालिक जो हैं वो मिलकर करते हैं। और आप देखते हैं कि इंतहाई दाएंबाजी की सियासी पार्टियाँ जो हैं और खासतौर पर इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स के खिलाफ पॉलिसियाँ जो रखती हैं वो कितनी मकबूल होती जा रही
2: है।
3: बरतानिया में देख लीजिए क्या हो रहा है और इसी तरह आप अब जर्मनी जो है अगर उसमें आज जो इंतखाबात हो रहे हैं एक रियासत में अगर ये पार्टी जो है ये जीत गई तो इसके पूरे जर्मनी पर क्या असरात होंगे उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते।
2: जी जी, जर्मनी की जो पॉलिसी है वो तो इससे उससे तो वाकिफ हो, वो बहुत ही एंटी मिनोरिटीज है। उसके अलावा इसराइल और फलस्तीन के मसले पे जर्मनी ने बहुत मदद की है इसराइल की, तो वो ये जर्मनी की जो पॉलिसीज हैं वो तो बड़ी जाहिर हो गई हैं।
3: ये जो नई पार्टी आई है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ये कमोबेश 42% वोट जो है
2: exactly, हाँ जी, है। बिल्कुल,
3: इसने तो खुद का ऐलान किया है कि ये यूक्रेन के लिए जर्मनी के मौकफ की हमायत नहीं करती और रूस की खुद कर हमायत करती है। आपको याद है कि ये वही रियासत है जो किसी जमाने में ईस्ट जर्मनी यानी वेस्ट जर्मनी कहलाती थी और ये सुर्खों की आमाजगा थी।
2: जी जी जी, बिल्कुल,
3: यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की मुबर इकतदार थी और यही बाकी मानदा लोग जो हैं अब वो वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक पेशरफ्त है जिस पर न सिर्फ जर्मनी बजाते खुद बल्कि उसके इर्द गिर्द की रियासतें जो हैं ममालिक जो हैं वो भी बड़े गौर से इसको देख रहे हैं कि ये क्या तब्दीली रूपमा होती है।
2: जी हाँ, मुतासर तो वो एक दूसरे सीखते तो हैं ये चीज़ें ऐसी।
3: लेकिन तजुर्ब की बात यह है कि डेनमार्क में इसे सरकारी तौर पर तो नहीं लेकिन गैर सरकारी तौर पर मुफ्त सरकार सिद्धांत जो हैं वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की सियासी पॉलिसियाँ जो हैं वो हम गैर मुल्की जो बरादरियाँ हैं उनको पाक साफ करने के लिए इनका होना जरूरी है।
2: अच्छा, आपको याद होगा कि हमारी वज़ीर आज़म इटली गई थी और वहाँ के इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं जो वेरी फार राइट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि यूरोप जो है उसमें मुसलमान ममालिक से जो लोग आते हैं उनको नहीं आना चाहिए क्योंकि वो हमारे क्राइम्स करते हैं। उसके अलावा यूरोप है वो क्रिश्चियन हेरिटेज है, उसको हम बरकरार रखेंगे। लेकिन कल जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है जिसमें नाजी सलूट किए गए हैं और बड़े गंदी गंदी नारे लगाए गए हैं उसके बारे में हमारी वज़ीर आज़म ने एक लफ्ज़ ना किसी और सांसददान ने उसको कंडेम किया।
3: बिल्कुल आपकी बात बजा है और इस पर आपने दैनिक सियासतदानों की जो बात कर दी हमारे अपने जो गैर मुल्क के पास मंजर रखने वाले सियासतदान हैं उनके मुताबिक भी कुछ कही है। उन्होंने अपना मुंह क्यों बंद रखा हुआ है?
2: वो फेसबुक पे लिखते हैं लेकिन ओपनली नहीं कहते।
3: वो ओपनली क्यों नहीं कहते?
2: जी जी,
3: उनको किस बात का खतरा है? यहाँ कानून का उनको तहफ़ हासिल है और अगर खुदा न खासा वो कोई ऐसी बात ना करे कानून के दायरे में रहते हुए वो इस चीज को कंडम क्यों नहीं करते खुलेआम? वो खुद रब्ता करें जराए अबलाग से टेलीविजन वालों से DR2 से DR से TV2 से किसी अखबार से वो करके तो देखें।
2: बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए।
3: और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जो ताल्लुक रखते हैं खासतौर पर सोशल डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले इमिग्रेंट जो हैं उनको तो चाहिए कि वो अपनी पार्टी की गर्दन रखे कि ये क्या हो रहा है।
2: हो सकता है कि वो पार्टी के अंदर चुपचाप कुछ कहते हों लेकिन अवामी तौर पर वो कुछ नहीं कहते हैं।
3: अवामी तौर पर ना कहना ये सबसे बड़ी मुनाफ़त है। आपने देखा है कि वेलसा पार्टी में क्या हुआ?
2: बिल्कुल,
3: जमीर की आवाज़ पर अमल करने वाले 5 लोगों ने वेलसा पार्टी के खिलाफ वोट देकर एक वेलसा पार्टी की सियासत में 100 साल सियासत में तहलका मचा दिया।
2: वो चाल आया उन पर बहुत ज़बरदस्त।
3: तो क्या हमारे जो जो जो इमिग्रेंट जो मेंबर हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के वो अपनी और अपने आल औलाद की और अपनी आने वाली नस्लों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते?
2: जी, मैंने पिछले हफ्ते आपको याद होगा शानी आप नहीं थे तो मैंने उनको बुलाया था इरफान जिलानी साहब को, वो ब्रॉनबी में जो ब्रॉनबी बल्दिया में भी हैं और रीजन में भी हैं और उनसे मैंने ये सवाल किया जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जी हम पब्लिकली जमात को नहीं कुछ कहते लेकिन यह है कि जब हम मीटिंग होती है हमारी तो हम वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अच्छा अब हम आते हैं कोपेनहेगन की तरफ। कोपेनहेगन में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। कोपेनहेगन के जो कमून है उसमें उन्होंने नई तजावीज़ पेश की हैं। सबसे तो पहले तो यह है कि वो कुछ सड़कों को साइकिलों के लिए मखसूस करना चाहते हैं। उसके अलावा पार्किंग लाइसेंस कोपेनहेगन में वो बहुत महंगा करना चाहते हैं और एक अजीब से उन्होंने इस चीज़ का मिलाया इन चीज़ों के साथ कि स्विमिंग हॉल में जो गैर मुल्की औरतें मर्दों के साथ नहीं स्विमिंग करना चाहती उस पे हम ख़ास तौर पे नज़र रखेंगे क्योंकि ये डेनिश वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है कि मर्द औरत अलग स्विमिंग करें। तो ये मुझे समझ नहीं, अच्छा साइकिलों के लिए तो ठीक है, या पार्किंग लाइसेंस की कीमतें बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो कारें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ट्रैफिक में और पोल्यूशन वगैरह होती है, लेकिन उससे शरिया स्विमिंग उसको कहना क्या, उसको उसके साथ क्यों मिला दिया उन्होंने?
3: ये तो खैर एक बिल्कुल अलग मामला है, और आप जानते हैं कि पिछले 20-25 साल से ये मामला जो है ये गाय बगाहे सर उठा लेता है
2: जी, जी, जी।
3: और इसके कई वजूहात और तवीलें जो हैं वो पेश की जाती हैं, लेकिन जहाँ तक बाइसिकलों का ताल्लुक है तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ नौइयत के बाइसिकल जो हैं वो सड़कों पर आ गए, और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ बैटरी सिस्टम के जरिए आप वो उनको चलाते हैं और उनकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो जाती है।
2: हाँ, बहुत तेज चलाते हैं वैसे भी जी।
3: और ऐसे बाइसिकल जो हैं वो हादसों का शिकार बनते हैं क्योंकि उनको चलाने वाले ज़्यादातर नौजवान होते हैं और साथ वो अपना टेलीफोन भी रखते हैं बाजू बात और इधर उधर जानते भी रहते हैं, तो वो इन चीज़ों को बचाने के लिए इन बातों का सद्दबाब करने के लिए कई एक आपने देखा पिछले दिनों पुलिस ने छापे मारकर वो जो स्पीड वाले बाइसिकल हैं वो कितने जबर किए और उसका जुर्माना भी बहुत ज्यादा है
2: जी, जी, बिल्कुल।
3: तो इस सिलसिले में वालदैन को भी ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे जब बाहर निकले तो क्योंकि ये बाइसिकल तो हर जगह पार्क करके ये नजर आ जाते हैं
2: जी, जी, जी।
3: आप अपने मोबाइल टेलीफोन से या अपने वॉच टेलीफोन से उनको स्टार्ट कर सकते हैं ये, और ताकि वो इस तरह से हरकतों से बाज रहे और मुकर्रा स्पीड की हद से ऊपर न जाए।
2: आपने देखा होगा कि कई दफा साइकिलिस्ट जो हैं वो साइकिल भी चला रहे हैं और SMS आईफोन पे SMS भी कर रहे होते हैं या कोई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, तो जैसे भी आपने कहा है ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट होगा तो आपको नुकसान होगा क्योंकि आप गिर पड़ेंगे, सर पे चोट आएगी। और तो हम अपने सामान और नाजरीन से कहेंगे जब आप साइकिल चलाएँ तो प्लीज़ साइकिल के ऊपर अपना जो है वो ख्याल रखें ना कि
3: जी जी। आपने जिक्र किया कि ये जो स्विमिंग हॉल हैं इनमें मुसलमान खवातीन जो हैं वो तो मर्दों के साथ और यानी ये को किस्म के हों ज्वाइंट हों तो ये मसला तो है, लेकिन और इसे ये कह देना कि जी ये शरीयत का असूल यहाँ पर कोई नाफज करना चाहते हैं ये नहीं है, ये एक सकाफती मसला है। बेशुमार दैनिक औरतें जो हैं वो मर्दों के साथ गुसल करना नहीं चाहती, स्विमिंग पूल में तैरना नहीं चाहती, तो उनको क्या किया जाएगा?
2: नसर भाई, मैं कई डेनिश खवातीन को जानता हूँ जो नहीं अपने जिस्म को दूसरों के सामने जो है नहीं दिखाना चाहती हैं और ना ही वो स्विमिंग करना चाहती हैं, लेकिन इसको शरिया स्विमिंग कहना भी जो है ये मैं समझता हूँ ये बड़ा इस्लामोफोबिक है। लेकिन जैसे भी आपने कहा कोपेनहेगन कमून में काफ़ी चंद गैर मुल्की बैकग्राउंड के जो मेम्बर भी हैं और दूसरे रेडिकल वेस्ट्रा की पार्टी की, लेकिन वहाँ पे उन्होंने शरिया उसको स्विमिंग को शरिया लॉ के तहत उसके बात की है, लेकिन जो कोपेनहेगन में इस्लामोफोबिया इतना बढ़ गया है अभी जो डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो रही है उसके बारे में एक लफ्ज़ भी जो है कोपेनहेगन कमून ने नहीं किया।
3: कोपेनहेगन कमून के एक वो इस पर आवाज़ उठाते हैं और वो कोपेनहेगन बल्दिया की जो हफ्तावार मीटिंग जो थी
2: जी
3: उसमें उन्होंने बड़े
2: काशिफ
3: साहब जो है, लेकिन एक चीज जो है वो सबको बचपूल आप या मैं और आप हमें सामने रखेंगे अपने मुकाबला।
2: वैसे साहब आपकी आवाज़ छूट रही है, आप टेलीफोन के करीब बैठे हैं?
3: जी मैं ठीक हूँ।
2: अब ठीक है।
3: हमें जज्बाती नारों से परहेज करनी चाहिए
2: जी,
3: और बे चुके जाते जो हैं वो उनका इजहार नहीं करना चाहिए। टू द पॉइंट और मौजू के अतबार से अगर बात करें तो बात सुनी भी जाती है और बात का वजन भी होता है, और यही तरीका जो है वो काशिफ ने अपना रखा है जी। अब देखना यह है कि एक फर्ज वाहिद की सजा वहाँ पर क्या असर दिखाती है, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी जरूर होती है कि कोई जो है जो बोल रहा है।
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डेनमार्क के हवाले से एक और खबर है जो अजीब सी भी है और एक इतने डेवलप्ड कंट्री में 2026 के पहले हफ्ते में 6,000 लोग जो हैं डेनमार्क में, उनके पास घर नहीं था, वो बेघर थे बिल्कुल, और सड़कों पे सोते हैं इधर। तो ये ऐसे मसाइल जो हैं, जो एक माशरे के मसाइल हैं, एक इतने डेवलप कंट्री में 6,000 लोग जो हैं उनके पास घर नहीं है, वो उनके पास सोने के लिए जगह नहीं है, तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है।
3: ये तादाद जो है ये बदकिस्मती से हर साल थोड़ी सी बढ़ी जाती है।
2: एग्जैक्टली।
3: लेकिन बाज मुहक्कीन जो हैं वो इसमें इस अमर को सामने लाते हैं कि कई लोग जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक के से तल्लक रखते हैं और वो यहाँ आ जाते हैं, उनके पास रहाइश के लिए भी कोई जगह नहीं होती और उनको भी इसी सर्वे में शामिल कर लिया जाता है, और यूं तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। लेकिन असल मसला जो है वो यही है, आपने बिल्कुल वजह कहा कि यहाँ डेनमार्क में बेघर रहने वाले लोग जो हैं उनकी तादाद दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। नई जो बस्तियाँ बसाई जा रही हैं मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों में, खासतौर पर कोपनहेगन, ग्रेटर कोपनहेगन के इलाके में, वहाँ वो इतनी महंगी होती हैं कि ये लोग वहाँ रह ही नहीं सकते। और फिर ये लोग जो हैं ये एक खास नफ्सियाती माहौल से तल्लक रखते हैं। इन्हें आप एक मरतबा घर मुहैया भी कर दें तो ये वहाँ चंद मारने के बाद फिर सड़क पर निकल आते हैं।
2: अच्छा।
3: और आपको याद है कि आज से कुछ तकरीबन एक साल पहले कोपनहेगन बल्दिया ने तो ये भी रखा था कि इस तरह के दिखाई देने वाले बेघर लोगों को कोपनहेगन शहर से बदर कर दिया जाए।
2: अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग सोसाइटी में अपनी आवाज़ नहीं उठाते, कुछ लोग उठाते हैं, लेकिन जो उठाते हैं उनकी एक मैं मिसाल देता हूँ। आपको पता है आउटलैंडिश ग्रुप जो है उसके जो सिंगर थे इसाम बी, जिनका ताल्लुक मोरक्को से है, उनके ऊपर एक बहुत ही मीडिया कंपेन उनके ख़िलाफ़ चली, ख़ासतौर पे बैलेंस के मैगज़ीन, वो बार बार उनको इस्लामिस्ट कहते हैं। तो इसाम बी साहब ने कहा है कि भाई मेरे पे तनकीद करो, मेरे म्यूज़िक पे तनकीद करो, लेकिन मुझे इस्लामिस्ट कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मीडिया जो है वो बार बार ऐसे कैरेक्टर को उनको तबाह करने के लिए, अब वो बहस बड़ी चल रही है अखबारों में, तो क्या ये मीडिया जानबूझ के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को परेशान किया जाए?
3: ये मुश्तल करने की और आवाम नास को गलत मालूमात मुहैया करने के करते हुए मखमसों में डालने की एक बदतरीन मिसाल है। जिस शख्स का आपने जिक्र किया है उसके मुताबिक मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, उसने सिर्फ इतना कहा था कि मुसलमान खवातीन जो स्कार्फ पहनती हैं, आप इसे यूं समझ लीजिए कि जैसे आपको याद होगा बाशी साहब कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जो जापानी फौजी होते थे वो सर पर इस तरह का एक रुमाल बांध रहे थे।
2: एग्जैक्टली। हाँ, और कामक खासतौर पर वो पायलट जिनको कामक के पायलट भी कहते थे। हाँ,
3: बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और वो कहते हैं कि इसको आप यूं समझ लीजिए, इसको दीन से या किसी और जगह से नस्बत नहीं दीजिए, ये एक कल्चर का हिस्सा है, एक सकाफत का हिस्सा है। अब उस बात को लेकर मुख्तलिफ सियासतदान और मुख्तलिफ खासतौर पर बैलेंस चीन अखबार जो है उसने जो वो धूल उड़ाई है, अल्लाह माफ करें जी, लेकिन वो अपने मौके पर बदस्तूर कायम है और उनका कहना है कि बात करें तो दीन को बीच में मत लाएं, हमारे कल्चर को भी सामने रखें।
2: बिल्कुल। अच्छा, उनका उनका एक गाना जो है वो,
3: अभी आपने जो बात की थी कि हमारी वज़ीर-ए-आज़म मेटे फ्रेडरिकसन जो थी वो इटली गई थी और वहाँ उन्होंने इटली के वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर ये कहा कि यूरोप को खासतौर पर मुसलमानों से पाक रखना चाहिए, क्योंकि

0: जो लेबर है उसका ख्याल रखें आप।
1: और अगर अगर यही इस आयत की
0: पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसको वो मजहब का रंग दे के लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं। अच्छा, अभी इस्लाम बी के खिलाफ उनका एक गाना है जो कि डेनमार्क की सॉन्ग बुक में शामिल किया गया पहली दफ़ा, अब वो उसके खिलाफ एक मुहिम चल रही है कि इसका वो गाना निकाल दिया जाए, जो क्योंकि ये गैर डेनिश गाना है, ये इसके डेनिश वैल्यू के खिलाफ, पता नहीं मुझे ये डेनिश वैल्यू जैसे आप कह रहे हैं क्या वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये मुहिम नसर साहब बहुत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही।
1: इसके लिए बाकायदा जद्दोजहद की ज़रूरत है और राय आमा को हमवार करने के लिए हमारी जो ये जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, कभी कोई मीटिंग बुला रहा है, कभी कोई मीटिंग बुला रहा है, इनमें डैनिश सियासतदानों को अपने मुकामी सियासतदान जो हैं आपके बल्दिया के आपके इलाके से जो पार्लियामेंट का रुकन है, जो जो जो रीजन का रुकन है, उनको बुलाकर उनके सामने ये मसाइल उठाएं, इन पर बात करें और उनसे जवाब तलब करें कि ये सब कुछ क्या है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब हमारी अपनी पाकिस्तानी बिरादरी में 4, 5, 6, 7 तकरीबें नहीं होती और वहाँ पर हमारे अपने ही भाई बैठे होते हैं, कोई डैनिश नजर नहीं आता।
0: वो तो आपको पता है, वो तो फेसबुक पोस्ट के लिए की जाती है मीटिंग को,
1: और वो बातें भी करते हैं सिर्फ पाकिस्तानी सियासत के मुताबिक।
0: बिल्कुल, अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि कोपेनहेगन कमून में उनके एक मेंबर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो चंद साल पहले इंटीग्रेशन की कमीशन बनाए गए थे हर बड़े शहर में, उसको भी ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि ये पैसा ज़ाया करने वाली बात है, इनको इंटीग्रेट करने के बजाय इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो ये सियासी तौर पे भी ऐसी खबरें जो है ना, वो लोकल लेवल पे भी ऐसी बातें शुरू हो गई हैं। अभी
1: आपने बिल्कुल बजा कहा, और इस सारे धंधे में, इस सारी मनफी तारीख में जो जो बड़ा किरदार दिखाई देता है हमें, वो हुकूमती पार्टी है, वो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है। एक छोटा सा शोशा छोड़ देते हैं और फिर उसको, क्योंकि असल में ये अपनी उन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं जो मुआशरे पर बोझ बन रही है।
0: बिल्कुल,
1: आपने देखा है जर्मनी में, अभी फिर मैं वापस चलता हूँ, जर्मनी में ये जो नई पार्टी आई है और जो आज साबित मशरकी जर्मनी में जो इंतखाबात हो रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सबसे पहला कदम वो ये उठाएंगे कि अपने यहाँ मौजूद यूक्रेन के तमाम लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा और यूक्रेन के जनूबी इलाकों में जहाँ अमन कायम है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वो वहाँ जाए। डेनमार्क जो है, आपने देखा है कि ये क्या कर रहा है, इसने यूक्रेन के लिए एक मिसाली हद तक सबसे ज्यादा माली इमदाद मुहैया की है।
0: जी बिल्कुल, हाँ।
1: सबसे ज्यादा फौजी मुशावरत इन्होंने मुहैया की है और सबसे ज्यादा फंड जो है वो इन्होंने यूक्रेन के लिए मुख्त किए हैं, और वो कहाँ से आए हैं, वो मेरी आपकी और आवाम की जेबू से आए।
0: एग्जैक्टली, हाँ।
1: और उस कमी को पूरा करने के लिए ये अब गैर मुल्कियों के लिए जो जो जो अदारे कायम थे या जो जो सोशल कंसल्टेशन के दफ्तर कायम थे उनको बंद कर रहे हैं।
0: लेकिन उसके लिए हमारी वज़ीर-ए-आज़म ये कहती हैं कि हम यूक्रेन की इसलिए मदद कर रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं।
1: तुम्हारे भाई होंगे।
0: अच्छा, अब डेनमार्क के हवाले से एक और ख़बर पे मैं आपका तबसरा लूँगा। शुरू में जब ये डेनमार्क और ग्रीनलैंड की बात चली तो वहाँ पे डेनमार्क ने कई नौजवान ख्वातीन के साथ

0: सारी तौर ममल्क से डेनमार्क थी, उसके बाद एक मौत है और एक खातिन को मुआवजे की रकम की अदा कर दी है। उन्होंने डेनमार्क जुर्माना को कम से कम तकसीम कर।
1: अच्छा, ग्रीनलैंड की हुकूमत ने जो ये दो रिपोर्ट्स जो प्रेस रिलीज़ की है, जिसमें दो रिपोर्ट्स के बारे में जिक्र किया है, उसके बारे में वज़ीर आज़म जो हैं डेनिश वज़ीर आज़म, वो ये कहती हैं कि हम इन रिपोर्ट्स को गहरी नज़र से पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये हुआ क्या है।
0: हाँ जी, गहरी नज़र से पढ़ेंगे, बल्कि उनको तो खुद भी लगा कर पढ़ना चाहिए। उसके लिए उनको कुछ मुकदम भी शायद ज़रूरी हो। जो आचार वो तो आचार आपने कितनी खातिन को आठ बना दिए, तो वो बचा ही नहीं पाया।
1: अच्छा, आपने जिक्र किया था यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ के बारे में, जर्मनी ने जो जर्मनी में जो इंतखाब हो रहे हैं उसमें एक पार्टी ने कहा कि हम इनको निकाल देंगे, लेकिन डेनमार्क जो है वो भी अब ये कर रहा है कि यूक्रेनियन रेफ्यूजी जो यहाँ पे आए हैं, अभी तकरीबन 47,000 के करीब जो यूक्रेनियन डेनमार्क ने जो है उनको पना दिया है, अब वो कहा यह जा रहा है कि वो भी जो है यूक्रेन रेफ्यूजी के बारे में अपने कवानीन को सख्त कर देंगे, तो क्या आप ये समझते हैं कि अब वो जो पहले वाली राय थी उसको ख़त्म करके अब उनको भी तंग किया जाएगा?
0: उनको तंग तो इस तरह से नहीं किया जाएगा जैसा कि जर्मनी से आसार दिखाई देते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन एक चीज़ जो है, यूक्रेन जो है वो अपनी फौजी अफराजी कुव्वत में कमी महसूस कर रहा है, और आपको याद है ये पहले भी ये असूल नाफिज किया गया था कि 18 साल से कम उम्र के यूक्रेनियन जो हैं वो अपने मुल्क को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको फौज में या फौज से मुतल्लिका अदारों में जॉब करने के लिए रखा जाएगा,
1: लड़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे उनको,
0: लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब 18 साल के बच्चा ही तो है
1: जी,
0: उनको वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डेनमार्क का ये कहना कि वो इनको महदूद रखेगा, ये सदाएँ आ रही हैं। और आपने देखा है कि यूलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में और दही इलाकों में, ये यानी मुदाफाती इलाके जो हैं उनमें मौजूद यूक्रेन के जो महाजरीन हैं उनके बारे में मुकामी सियासतदार और मुकामी लोग जो हैं वो कोई अच्छी राय नहीं रखते, और उनका ये कहना है कि इनको किसी न किसी तरह से छेटा जाए और मुमकिन हो तो इनको वापस भेजा जाए।
1: अच्छा, आपने जिक्र किया था वेंसा पार्टी में एक बगावत हो रही है, और अब जो खबर आई है उसमें ये बताया गया कि 18 वेंसरा पार्टी के जो पॉलिटिशियन हैं उनमें से 4 ने खुल के जो है अपने जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू की है, तो क्या इससे वेंसरा पार्टी की पोजीशन जो पहले ही बहुत कमज़ोर है वो और भी कमज़ोर नहीं होगी?
0: बिल्कुल, आपने बढ़िया कहा, और खास तौर पर
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल radio@snipeline.com।

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया और इंटरनेट की और गूगल वगैरह, ये लोगों को बहुत मालूमात फराहम करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अहमक हो रहे हैं, स्टूडेंट जो है, तो ये एक अच्छी पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन हुकूमत इस पर जो है वो बात नहीं करती ज़्यादा खुल के।
1: नहीं, देखिए बेटे, जिन्होंने हुकूमती चारों सियासी पार्टियां जो हैं उन्होंने अपना अपना मौका भी इस मौजू पर पेश किया है
0: जी।
1: और एक मुश्तरक लाहे अमल इख्तियार करने का अंदिया भी दिया है।
0: अच्छा।
1: और ये तस्लीम किया है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक डैनिश तलबा जो हैं उनमें दर्सी किताबों की अबारत पढ़ना जो है तसलसल के साथ वो कोई किताब नहीं पढ़ सकते, यानी वो अपनी जुबान भी नहीं पढ़ सकते। इसका ये क्योंकि एक जुमला पढ़ते हुए वो तीन चार मरतबा रुकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और उस जुमले की अगर इनको वजाहत करने के लिए कहा जाए तो ये दाएं बाएं देखने लगते हैं, इनको पता नहीं चलता कि पढ़ा क्या है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: इस सूरत हाल में इस रिपोर्ट को बड़ी शिद्दत से लिया जा रहा है और असातिज़ा की तंजीम जो है उस पर भी बोझ डाला जा रहा है, लेकिन असातिज़ा कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा ही फर्ज नहीं कि हम बच्चों को कुछ कहें, वालिदैन को चाहिए कि वो उन ज़राए को महदूद करें जिन पर बच्चे अपना ख़ामखा का ज़्यादा वक़्त सर्फ करते हैं।

0: टेलीफोन और टेबलेट जो है वो उसको टोटल बैन कर दिया जाएगा।
1: बिल्कुल आपने बजा कहा, और इसी तरह हुकूमत चाहती है कि इस तरह के सोशल मीडिया वगैरह को बंद किया जाए और इसके लिए तजवीज है। लेकिन कल एक बड़ी खूबसूरत बात ये हुई है, खूबसूरत क्या एक अहमकाना बात ये हुई है कि वज़ीर आज़म जहाँ तलबा के लिए इस तरह की चीज़ों पर मुआनत लगाने की बात कर रही थी, वहाँ कल इन्होंने ये कहा है कि मैं तो खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हूँ और मैं करती रहूँगी। तो अब ये उनसे ये सवाल भी किया जा रहा है कि जब आप दूसरों को बंद कर रही हैं तो अपने लिए ये सहूलत इस तरह ऐलानिया इख्तियार करने की बात की चुप क्या है?
0: जी जी बिल्कुल जी। अच्छा नज़र साहब, एक पाकिस्तानी कम्युनिटी की खबर है और वो डेनिश तो खबर तो है ही है, वो ये है कि अभी सिकंदर सदीक साहब जो हैं उनका जो केस चल रहा था उनके इलेक्शन का और वो उनका रिहाइश कहाँ थी और उन्होंने कोपेनहेगन में इलेक्शन लड़ा, अब उसका आखिरी फैसला आ गया है और फैसला ये है कि उनका जो बिजली के बिल देखे गए और उनका जो बैंक का वो कौंटो देखा गया उसमें कहाँ पे ये जो खर्च करते रहते हैं, तो उससे पता चला है कि सिकंदर सदीक साहब जो हैं वो कोपेनहेगन जो है वो सिर्फ इसीलिए मूव हुए थे कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, लेकिन वो ज़िंदगी अपनी जो है वो हैरले में गुजार रहे हैं जहाँ पे वो रहते हैं। तो अब वो पता चला है कि उस रिहाइश के केस की वजह से सिकंदर सदीक साहब जो हैं उनको वो कोपेनहेगन टाउन हॉल में नहीं बैठ सकते, उनकी जगह जो है हाशिम आगा नदीम के बेटे जो हैं वो जो है उनके सप्लेंट होंगे। तो अब ये इस पर जो है बिल्कुल पुंक्तम हो गया है, और जब सदीक सिकंदर साहब से पूछा गया कि आप अभी जो कोर्ट में जाएंगे तो उन्होंने कहा मैं इस कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ जो है वो फैसला हो गया है। ये तो ये एक दुख वाली बात है कि एक बहुत ठीक ठाक बोलने वाला शख्स जो है वो कानून में नहीं होगा।
1: ये देखिए आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि दुख वाली बात है।
0: जी जी,
1: दुख वहाँ होता है जहाँ इंसाफ के खिलाफ आपकी हकीकत के खिलाफ की चीज़ जो है वो रूनमा हो, फिर आप दुख का इजहार कीजिए। हमें इस बात का एहसास जरूर है कि सदीक इतनी ऊंची परवाज जो कर रहे थे वो उनको फायदेमंद साबित नहीं हुई।
0: True.
1: और उसके लिए उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया, अब दोनों तरफ का अगर मौकफ आप सुने तो कोपेनहेगन बद्दिया का जो मौकफ है वो भी बहुत ठोस है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर ये फैसला हुआ है कि सिकंदर सदीक जो हैं वो सिटी काउंसिल में अपनी, ये लफ्ज़ में जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिटी काउंसिल।
0: जी जी बिल्कुल,
1: क्योंकि अक्सर वो अपने बयान में ये कहते हैं कि कोपेनहेगन पार्लियामेंट, और उनसे सवाल को करने वाले पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भी यही कहते हैं कि कोपेनहेगन की पार्लियामेंट में आपने ये कहा।
0: वो नहीं पता ना उनको, वो समझते हैं कि वो पार्लियामेंट कहने से वो ज्यादा बहुत
1: सिटी काउंसिल है और इसे सिटी काउंसिल के नाम ही से पुकारा जाना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: अंग्रेजी में।
0: जी जी,
1: वरना तो ब्यू बोल रहे
0: हैं कोपेनहेगन बल्दिया की। हाँ जी बिल्कुल,
1: कोपेनहेगन बल्दिया की ये काउंसिल है। अच्छा खैर, लेकिन सदीक के इस तरह के जवाल पर पाकिस्तानी कम्युनिटी वाकई ही बड़ी क्या आप उसे कहेंगे अपने आप को निदामत महसूस कर रही है कि उनकी एक आवाज़ जो थी वो बंद की जा रही है। और आपने ये बिल्कुल वजह कहा कि सदीक से जब लोगों ने ये पूछा कि क्या वो इस मामले को आगे हाईकोर्ट में लेके जाएंगे या कुछ करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं करेंगे। और एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि वहाँ चूंकि उनकी अहलिया को भी बुलाया जाएगा, सबक किया जाएगा, तो वो ये सारा तमाशा नहीं चाहते। दूसरी तरफ एक और बड़ी अजीब चीज रूनमा हुई है कि एक और डैनिश सियासी पार्टी जो है मेरे ख्याल में मॉडरेट है, उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो सदीक के खिलाफ पुलिस के हाथ फौजदारी मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि और उनके सदीक ने अपनी रिहाइश को गलत मालूमात मुहैया करके अपने आप को कोपेनहेगन में मौजूद करार दिया, ये फैसला गलत था, और इससे तो उनकी पार्टी के दूसरे लोग भी तो आगाह होंगे। लेकिन ये हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि सदीक ने जो किया उन्होंने अपने ख्याल के मुताबिक दुरुस्त किया। अब उन

0: ये दुरुस्त करना आपने लिए, ये बल्दिया के नजदीक अगर गलत है तो फिर उसका फैसला भी आ गया है। दूसरी तरफ वही पार्टी जो है अब वो ये कह रही है कि जब वो मुकदमा करेंगे तो वो सिर्फ ये मुकदमा नहीं करेंगे कि इन्होंने अपनी जाए रिहायश का गलत बताया, बल्कि वो इसके साथ ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन के दौरान इस पार्टी को जो सरकारी इमदाद दी गई थी जैसा कि तमाम पार्टियों को मिलती है और वो वापस की जाए, और अगर ये बात शुरू होती है तो इस मामले का अभी टमटम यानी अभी इख्तितामिया नहीं हुआ, अभी इसका नया आगाज होने वाला है।
1: तो इसका मकसद ये है कि उनको आराम से लीव बहने दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन तो दोबारा भी होगा अभी दो साल के बाद, वो फिर वो जो हो सकता है कामयाब हो जाए तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा।
0: बिल्कुल, ये उनके लिए, ये उनके लिए खुला मौका और एक खुला चैलेंज भी है। देखिए उन्होंने 3000 के करीब मेरे ख्याल में
1: 3600 वोट मिले थे उनको, जी जी,
0: जाति वोट जो है हासिल किए थे, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दानिश बुनियादी सियासत में बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या आपने वो इन राय दहिंदगान को इस फैसले आने के बाद अपने साथ रख सकेंगे?
1: जी जी,
0: क्या उनके राय दहिंदगान जो है वो अपनी राय को बदलने के लिए या उस पर कायम रहने के लिए सोचेंगे? और ये उनका हक है कि वो अगले इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार खड़े हों, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से होंगे या फिर वो कोई एक नई तंजीम या नई पार्टी खड़ी करेंगे, या ये आने वाला वक्त बताएगा।
1: अच्छा, आखिर में एक और ख़बर है जो कि काफ़ी तश्वीशनाक है, और वो जिस तरीके से पेश किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो है कैलकुलेशन किया है कि 2010 में 2100 में डेनमार्क किस तरह होगा, कैसे जो है नज़र आएगा। अब वो ये कहते हैं, उन्होंने जो ये शुमार तादाद शुमार पेश किए उसकी रूह से डेनिश लोग, वाइट क्रिश्चियन डेनिश लोग जो डेनिश बैकग्राउंड है जिनकी, वो सिर्फ 68% होंगे। इसका मकसद ये है कि तकरीबन 32% लोग जो हैं उनका ताल्लुक डेनमार्क से नहीं होगा, और वो तीसरी दुनिया से जो वो लोग आए होंगे, और ये एक उनकी नज़र में जो है ये एक बहुत तश्वीशनाक ख़बर है। अब जिस चीज़ का मुझे जो अजीब सी लग रही है वो ये है कि आप इस ख़बर से क्या साबित करना चाहते हैं, और अगर आप यूरोपियन ममालिक पे नज़र डालें, फ्रांस इंग्लैंड जहाँ पे गैर ममालिक से लोग आए हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो गए उनको रहते हुए फ्रांस और इंग्लैंड में, तो और वहाँ भी अभी वो 10-12% पूरी टोटल पॉपुलेशन ही हुई, और अक्सरियत उनकी वो जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, लेकिन डेनिश गवर्नमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री वो ये खबरें ये ऐसी खबर किस तरीके इस तरीके से क्यों पेश की जा रही है?
0: देखिए, अपने आबादी में डेनिश नस्ल आबादी में राजनीतियों की, यानी जैसा आपने कहा किसी दुनिया के ममालिक जो हैं गैर डेनिश जो हैं उनकी तादाद पर निगाह रखना ये एक अच्छी बात है, ये कोई ज़्यादा तश्वीशनाक बात नहीं। लेकिन और यही चीज़ जो है ये साबित करती है कि डेनमार्क जो है वो एक कसीदुल सकाफ़ती कसीदुल कौमियती मुल्क है, और इस चीज़ को डेनमार्क को बाशे फख्र समझना चाहिए अपने लिए कि यहाँ कितनी कौमें जो है वो आबाद है, और इसे ये खतरा बनाकर सामने नहीं जाना चाहिए कि फलां साल के बाद हम इतने कम हो जाएंगे कि हम अकलियत में आ जाएंगे।
1: जी,
0: ये चीज़ जो है ये तसर पैदा करना दरअसल इससे यहाँ रहने वाले गैर मुल्की जो हैं और ख़ासतौर पर मुसलमान जो हैं उनके खिलाफ डेनिश लोगों को मुतहरक करने या सोच विचार करने का मौका मुहैया करने के मुतराजिम होता है।
1: एग्जैक्टली, यही मेरा
0: और ये गलत बात है।
1: जी जी जी,
0: ये हथियार जो है ये जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि इससे गैर मुल्कियों पर जद पड़े।
1: अच्छा, इसमें नसर साहब एक और चीज़ भी जो काबिल गौर है वो ये है कि जो कैलकुलेशन उन्होंने की है उसकी बेस क्या बनाई है कि 2019 से लेकर 2025 6 साल के अरसे में कितने लोग यहाँ पे आए, माइग्रेशन कितनी हुई, असालम सीकर कितने आए, तो अब वो आने वाले 100 साल में तो वो सिचुएशन नहीं रहेगी। ज़रूरी तो नहीं है कि उसी तादाद से गैर मुल्की लोग आते रहें यहाँ पे, तो आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए भी तो सही तादाद और शुमार होनी चाहिए।
0: आपने बिल्कुल बजा कहा, इस रिपोर्ट में जो चीज़ मुझे कम महसूस हो रही है और जिसका इजहार बड़ा कम किया गया है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें जो हैं ये पिछले 20-25 साल से हर साल कमोवेश जारी होती हैं आबादी का तनासब देखने के लिए, लेकिन इसमें ये महसूस मालूम नहीं हो रहा कि कितने लोग यहाँ से हिजरत कर गए हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अगर उस फिगर को सामने रखा जाए तो यहाँ आने वाले लोगों की जो शरह तनासब है वो कोई ज्यादा नहीं बनती। लेकिन क्योंकि वो फिगर जो है इस वक्त मौजूद नहीं है, हम बात नहीं कर सकते, लिहाजा ये कहना कि ये रिपोर्ट जो है ये कुछ उन खतरात की आगाही करती है, उन नादीदा खतरात की आगाही करती है जो गैर मुल्कियों की आबादी बढ़ जाने से खुदा नखास्ता डेनमार्क को दरपेश आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपका खदशा बिल्कुल बजा है और इस पर हमें भी गौर करना चाहिए कि इस तरह की रिपोर्टें मुआशरे में कसीर कौमियती और कसीर सकाफती जो जो हम आंगी है उसको पैदा करने की बजाय नुकसान दे सकते।
1: बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज हमने बहुत से टॉपिक जो हैं कवर किए हैं। अगले हफ्ते मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं स्ट्रासबर्ग में होगा वहाँ पे एक मीटिंग में, तो उससे अगले हफ्ते जो है फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ये था आज का हमारा प्रोग्राम रज़ा भाई, हमें उम्मीद है कि हमारे सामईन और नाज़रीन को जो हमारा ये प्रोग्राम में पसंद आया होगा। आप अपनी राय और अपने कॉमेंट्स जो है हमारे रेडियो को बताते रहें, तो अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल रेडियो स्नैपलाई।

0: वतन।
1: माशाल्लाह क्या बात है जी, क्या बात। अच्छा शाह साहब, ये 14 अगस्त भी गुजरा है, इस अभी ये पिछले महीने सितंबर अभी शुरू हो चुका है, तो इसमें भी यहाँ भी काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं, तो आपके पास में शायद टाइम नहीं आया
2: मुझे आप। जी बिल्कुल, मुझे दो जगह से दावत अच्छा, आई थी से भी और इधर अच्छा, चौधरी जो हम
1: लियाकत साहब, अच्छा ठीक है,
2: मैंने हमें भी भरी थी लेकिन मेरी अचानक आँख का ऑपरेशन हो गया था, तो उसकी वजह से फिर मैं उधर नहीं जा सका था, माजत कर दी।
1: लेकिन देखें इस दफा भी ये 14 अगस्त के हवाले से काफ़ी तंजीमात जो यहाँ हैं उन्होंने प्रोग्राम किए, बल्कि उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंगो फेस्टिवल जो हमारा समर सीज़न जब शुरू होता है पाकिस्तान से, ये सौगात जो होती है हमारी आमों की, तो ये मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने प्रोग्राम किए और उसमें म्यूज़िकल भी था, तो आप भी शायद सोशल मीडिया पे देखते होंगे काफ़ी तादाद में यहाँ की फैमिली अपने बच्चों के साथ जाती रही है, और ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा ट्रेंड शुरू हो चुका है कि लोग अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ यहाँ जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये हमारे फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, ये हम मनाते हैं, इसकी अहमियत इतनी है। अच्छा शाह साहब, वक्त के साथ साथ मौसीकी में जिद्दत पैदा हो रही है, यानी अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक आम बंदा भी जो कुछ भी नहीं सीखा होता उसके उसके अंदर थोड़ा सुर होता है, थोड़ा बहुत वो सहारा लेता है ट्रैक का या म्यूज़िक का या कोई इस तरह के, तो वो जनाब एक रिकॉर्डिंग करवाता है, तो रिकॉर्डिंग के बाद अगर वो गाना हिट हो गया तो वो जनाब अपने आप को फनकार।
2: इसमें कोई शक नहीं, आजकल ये जो बड़ा शॉर्टकट आ गया ना
1: जी जी,
2: पता है अब मैं जैसे हारमोनियम के साथ हम बैठे हुए हैं, अगर इस तरह वो चार पांच जो म्यूजिशियन होंगे कितना मुश्किल होता है ये अरेंजमेंट करना, तो लाइव म्यूजिक लाइव गाना कुछ हो रहा है लेकिन वो कुछ हो रहा है, लेकिन ये बहुत सहूलत है आजकल।
1: अच्छा आप कैसे डिफरेंस करते हैं लाइव म्यूजिक में और ट्रैक पे गाना? ट्रैक पे मुश्किल होता है जो ट्रैक चलता है और उस
2: पे ट्रैक पे भी मुश्किल होता है, लाइव में भी मुश्किल होता है, क्योंकि लाइव का होता है बिल्कुल खुला गाना, एक चीज को आप उसको बारी बारी उसमें इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, उसमें अपनी फीलिंग डालेंगे, और जो अपना ट्रैक बने होते हैं वो होते हैं बिल्कुल यानी फिक्स होता है, उसमें भी गले की वैरायटी आवाज की वैरायटी का होना अच्छा, बड़ा जरूरी है कि जो बंदा गाए बिल्कुल सही सुर में भी आए और जो अल्फाज हैं उनकी अदायगी भी अच्छी हो
1: जी। अच्छा लाइव में तो ये होता है शायद, पता नहीं मैं इस पे ठीक हूँ, कि लाइव में आपको मदद मिल सकती है, मदद मिल जाती है, यानी जो बजाने वाले होते हैं साजिंदे उसमें अगर आप नीचे ऊपर
2: कुछ फन भी अगर दिखाना चाहें उसमें थोड़ा
1: वो भी आप कर सकते हैं,
2: वो भी उसमें पॉसिबिलिटी
1: होती है, और दूसरा ये कि अगर ऊपर नीचे हो गया तो वो कवर हो जाता
2: है,
1: और लेकिन ट्रैक में आपको ध्यान रखना पड़ता है आप बिल्कुल, क्योंकि वो जहाँ शुरू होना है जहाँ ख़त्म होना है इस तरह। अच्छा तो आप क्या समझते हैं कि म्यूज़िक के साथ इंसाफ हो रहा है इस वक्त?
2: हाँ बस जो भी,
1: चाहे वो क्लासिकल है चाहे वो नीम क्लासिकल
2: है, कि हर अच्छा, यानी वक्त बदलता है।
1: अच्छा
2: अब देखें ना, अगर हम इस चीज़ को अगर कहीं और जब हम जरा निगाह दौड़ाएं पाकिस्तान के मजाज के पाकिस्तान के माहौल में, कभी ये देखा था आपने कि हर दीन हर मजहब में औरतों की रिस्पेक्ट है, बच्चों की रिस्पेक्ट है, हमारे दीन नहीं हमें इजाजत देता कि हम बुजुर्गों पे हाथ उठाएं, औरतों की बेहुर्मती करें। अब जिस माशरे में ये चीजें आ जाती हैं वहां पे मौसीकी का माहौल या मजाज, पता है रात को बैठना मिलके लोगों ने गांव में अपना अपने बुजुर्गों के साथ बातें सुनना करना, कोई सैफ मलुक गा रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, अब वो चीजें तो तकरीबन खत्म होती जा रही हैं। जब भी आप ये जो सोशल मीडिया की आप बात करें, जब भी आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या हो रहा है,
1: अच्छा
2: कितना जुल्म हो रहा है।
1: अच्छा तो अल्लाह पाक सैफ अल मुल्क का जिक्र आया तो क्या आप कोई सुनाना चाहेंगे मियां साहब का या सैफ अल मुल्क कोई कलाम?
2: चले कोई वो भी सुन लेते हैं, वो भी हो जाता है,
1: थोड़ा सा ये सुनाए और उसके बाद फिर जी
2: पहले बाऊ साहब को ना थोड़ा
1: सा देख लें अपना। बिल्कुल सुनाए

0: माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह शाह साहब, रोंगटे महसूस होता है ये
1: कलाम तो बड़ा ऊंचा था लेकिन बस नहीं, वो नहीं, क्या बात है लग गई
0: लेकिन क्या बात है जी। फिर भी ये इसमें तो इतनी चाशनी और प्यार और अकीदत होती है कि ये जिस तरीके से भी परफॉर्म किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बड़ी मतलब है लज्जत होती है। अच्छा शाह साहब, म्यूज़िक के हवाले से कोई कलाम वगैरह आप कंपोज करते रहते हैं या किए हैं कोई माजी में, तो उनमें से कोई अगर कोई आप सुनाना चाहे चाहे वो
1: ये बिल्कुल बेशुमार गज़लें हैं,
0: ठीक है,
1: मैंने अपनी कंपोजिशन जिन्हें अच्छा किया है बहुत अपना जब कभी शौक था मेहनत करते थे तो
0: ठीक है चलें,
1: बल्कि ऐसे भी हुआ एक एक राग में तीन तीन भी मैंने किए।
0: अच्छा,
1: यानी मुख्तलिफ शक्लें लेकिन वो राग
0: उधर आमद होती है उस वक्त था ऐसे ही।
1: चलें ये सामने एक मेरी गजल आ गई है, ये इसको मैं इत्तफाक से जिनका मैं ये कलाम गा रहा हूँ मुर्तजा बरलास, उनके उनके यहाँ बैठे हुए थे, दो गज़लें उन्होंने मुझे दी गाने के लिए, एक ये वाली थी आँख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, और एक थी वो नींद भी तेरे बिना ऐसे सजा लगती है, वो कहीं मैं ना कहीं वो आज मिसप्लेस हो गई है, तो ये गज़ल मैं गा रहा हूँ। और इत्तफाक़ की बात है उधर वो अपना जो बहुत बड़े शायर अकील, वो क्या नाम था जिन लोग नहीं वो बड़े बड़े शिफाई अकील छवाई कतील छवाई वो भी उधर बैठे हुए थे मुझे तो उनको यहाँ तो ये मैं अगर हाँ असल में गला रखना कुछ हो गया

0: क्या बात है। अच्छा शाह साहब, पाकिस्तान में अभी ये पता नहीं आपका इत्तेफाक हुआ है, ये पाकिस्तानी आइडल एक सीज़न 2 शुरू हुआ है,
1: जी
0: तो इसमें मैं तो ये वाकई बड़ा हैरान हुआ। तो इसमें एक फ़ीमेल हमारी बनी है पाकिस्तानी आइडल, हीरा कैसर जिसका नाम
1: अच्छा
0: है, और
1: जी।
0: उसका जब बैकग्राउंड मैंने देखा या सुना तो मैं तो हैरान रह गया कि उसका खावंद एक उसकी अजाम की दुकान है,
1: माशाल्लाह।
0: लेकिन उनके घर में ये वो उससे पूछते हैं कि ये आपका कोई उस्ताद है या कोई इस तरह का, तो वो कह रही थी कि मेरे वाले साहब बस वो सुनते थे, वो भी म्यूज़िक वो भी बाकायदा नहीं करते, और मैं भी जब कोई गाती थी ना तो वो मुझे दुरुस्त करते
1: हौसला अफजाई
0: थे,
1: करते
0: हौसला अफजाई भी करते थे और कहते थे इस यहाँ इस तरह इस तरह। लेकिन ये जो इस वक्त आइडल, पाकिस्तानी आइडल मैं अटैच रहा हूँ, देखता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म कभी कभी होते हैं। इससे पहले पहले सीज़न में पाकिस्तानी आइडल एक बना था हमारा मंडी बाउलदीन का जमात बेग, उससे
1: हैं।
0: मैंने प्रोग्राम भी किया उसके साथ
1: अच्छा
0: रेडियो पाक लिंक पे।
1: जी।
0: तो ये मैं जब उसको सुनता हूँ ना या देखता हूँ, वो यानी पक्के सही राग, वो जैसे कहते हैं ना वो
1: माशाल्लाह
0: अलाप या वो पलटे देना
1: सही।
0: आवाज़ को,
1: हाँ
0: यकीन
1: माशाल्लाह,
0: करें अगर आपका इत्तेफाक हुआ ना तो इसका उसका एक
1: यानी
0: दो
1: बहुत
0: गाना
1: अच्छे
0: उसने ये फाइनल
1: माशाल्लाह
0: में ना, एक तो जिंदगी तमाशा बनी और
1: अच्छा
0: एक
1: अच्छा अच्छा
0: जिंदड़िए हुनते मबरूल है,
1: हाँ
0: यकीन करो इसमें वो उसने शाह साहब ऐसे पलटे मारे, पता
1: सुभानअल्लाह
0: नहीं रजा साहब का इत्तेफाक हुआ है, और इस वक्त वो जनाब जाहिर है पूरे
1: माशाल्लाह
0: पाकिस्तान में बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में बड़ी मतलब है
1: माशाल्लाह
0: मशहूर है, बाहर भी लोग उसको देखते हैं। अच्छा तो

0: वो होते हैं कि जो जिनका वो फैमिली में ये चीजें आ रही हैं
1: बैकग्राउंड
0: जैसे जैसे मसलन इतने बड़े घराने हो
1: गए पटियाला घराना या
0: शाम चौरासी, तो ये उनमें तो ये चीजें है ना कि वो उनका
1: वो क्या कहलाते हैं, वो टाढ़ी कहते हैं।
0: नहीं यानी कि वही होता है कि इसमें यही होता है कि उनको यही कहते हैं कि जो सही प्रोफेशनल जो यानी ये एक पंजाबी का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है।
1: अच्छा
0: तो लेकिन
1: नहीं वो कहते हैं ना कि यार सुनने वाला
0: ताई से मुराद के जो मसलन बाहर से आया है ना।
1: अच्छा।
0: जैसे इस फन का जिसे शौक लगा।
1: अच्छा।
0: अब मैं जैसे नात पढ़नी शुरू की या अच्छा। जो भी है उससे उसके में फिर आवाज अच्छी थी तो मैं कवाली में आया।
1: अच्छा।
0: फिर मौसीकी में फिर ये चीजें कुछ थोड़ा सोचा
1: मतलब आप अताई में आते हैं।
0: हाँ जी उनके अच्छा। उनके चीजें जो है घर वाली होती है ना।
1: अच्छा।
0: घर में उन्होंने वो चीजें जैसे
1: तो
0: उनको वो ऐसे मिलती है। अब यही कहते हैं जो सही प्रोफेशनल जो कहते हैं कि हम ही।
1: लेकिन आप क्या समझते ज़ाती तौर पर क्या आप राय देना चाहेंगे कि ये फन जो है ये म्यूजिक जो है ये एक अल्लाह ताला की तरफ से या जैसे कहा जाता है कि कोई भी आर्टिस्ट या फनकार वो पैदा होता है लेकिन वक्त उसको पॉलिश करता है उस फन में।
0: इसमें मैं आपको यूं मैं बयान करता हूँ सुर और लय दो चीज़ें हैं ये सिर्फ कुदरत की तरफ से आती हैं। सुर को हम तरन्नम भी कहते हैं जितने प्यारी किरत करते हैं नात पढ़ते हैं
1: जी।
0: वो जो तरन्नम जो है ना वो है सुर उसे बोलते हैं
1: ठीक है।
0: और जो है रिदम वो होता है यानी कि ये जो हमारी टेम्पो है जैसे ये हार्ट बीट चलती है
1: ठीक है
0: एक वो टेम्पो के साथ
1: वो
0: ये सारी खुदा दाद चीज है ये
1: अच्छा।
0: अल्लाह पाक की तरफ से है। इतने इतने अच्छे गाने वाले हैं जिनकी आवाज बड़ी अच्छी है
1: लेकिन
0: वो रिदम से महरूम है उनकी ये फीलिंग नहीं है रिदम वाली नहीं है वो रिदम से बाहर है। कई लोग रिदम में है और उनमें सुर नहीं है ना तो ये अल्लाह पाक की अता होती है।
1: अच्छा।
0: बाकी ये है कि इस मुल्क में आके आप देखें ना जहाँ पे कोई बंदा उसमें जो भी कोई टैलेंट है उसको यहाँ पर उसको हौसला
1: अफजाई
0: होती है,
1: है।
0: पाकिस्तान में मैंने इतना मुश्किल वक्त गुजारा है कि देखो जी शानिया का बड़ा सैयद होकर की पे करता है यानी ऐसी चीजें वो फिर इंसान को डिस्करेज करती है।
1: बिल्कुल ऐसे
0: इधर वो चीज नहीं है इधर ये अल्लाह पाक की यही ये नेमते हैं अल्लाह पाक की देन है जिसको भी अता कर।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। और अगर मैं समझता हूँ कि इसमें ये कहा भी यही जाता है कि ये कोई हराम नहीं है
0: नहीं, नहीं,
1: म्यूजिक या कलाम कोई भी और खास तौर पे आरफाना हमदिया नातिया काफ़ी इसमें तो अल्लाह ताला की तारीफ होती है तो वो कैसे हो सकता है कि ये हाँ जो कलाम किसी सुनने या देखने वाले को रास्ते से हटाए उसके किरदार को चेंज करे तो जाहिर है वो तो ऐसे ही है ना। फिर
0: जो अच्छा, चीज आपको असल से दूर करें ना वो आपके लिए हराम है। चाहे वो खाना ही है ना अगर खाना खा के आप बोल जाएं कि नमाज का टाइम गुजर रहा है या जी हो रहा है
1: हमारा माशरा शाह जी हमारा माशरा बड़ा जालिम है। जैसे आपने ये भी फरमाया कि पाकिस्तान में तो ये होता है कि बंदा कोई इस तरफ आए तो वो कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बहुत डिस्करेज
1: अभी ये मिरास कोई मिरासियों का मतलब कहा जाता है ये मिरासी है जी और यही कहते हैं लोग लेकिन मिरास तो कह लें कि
0: किसी को मिल जाने
1: ये
0: बड़ी
1: किसी भी फन में हो जी। सब टाइम हमारे पास थोड़ा सा है अभी
0: मैं,
1: क्या आप
0: असल में आज मैं पहले तो अपने सुनने वालों को सबसे दरख्वास्त करूंगा मैं आज कल एक कर्ब से गुजर रहा हूँ। मेरी वालदा साहब अल्लाह पाक ने सेहत दे तंदुरुस्ती दे वो बहुत कमजोर हो चुकी हैं तो मैं यानी उनके लिए मेरे ये मेरी एक कजन है वो उनको देखने आई मिलने आई मैं भी उधर था पाकिस्तान में तो उन्होंने ये नज़म लिख के दी।
1: अच्छा।
0: उनके दिल की आवाज़ थी
1: अच्छा।
0: वो कहते हैं कि ये चाची जी को मैंने जब देखा तो
1: अच्छा।
0: वो मेरी कज़न है तो बहुत प्यारी शख्सियत है बड़ी दरवेश हैं।
1: अच्छा।
0: तो ये उनके चंद अशार में
1: बिल्कुल
0: आपके सामने रखता हूँ और आप लोगों ने भी फिर ये सब ने दुआ करनी है
1: बिल्कुल
0: कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे उनको हिम्मत दे ताकत दे हमारे ऊपर उनका साया कायम रहे। आमीन।

0: ये हाँ जी ये जो जो लिखी थी माशाल्लाह वो हमारी बाजी हैं हमारी जिनी, तो वो माशाल्लाह कासम अली शाह साहब जो है ना कासम उनकी खाला है और इत्तफाक की बात है कि इनकी सबसे पहली लिखी हुई नात मैंने वो सातवीं क्लास में था
1: उसमें,
0: तो उधर मैंने वो पढ़ी थी मेरे मेरे मुस्तफा सल्ले अला तेरी
1: शान
0: सब, तो ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी शख्सियत
1: कासम अली शाह, तो जाहिर है जी उनके साथ भी मेरा ये इंटरेक्शन बातचीत हुई थी और वो तो जाहिर सही
0: बड़ी इज्जत दी
1: जी जी बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में है भी हमारे गुजरात के ही
0: हमारे गांव के
1: हैं
0: ये उनकी खाला की
1: खाला
0: है
1: वही मैं कह रहा हूं,
0: तो और उनकी खाला मेरी चाचे की बेटी
1: जी बिल्कुल जाहिर है तो वो क्लोज ही है ना जाहिर ये बड़ी लेकिन शाह साहब ये बात वाकई सही है कि आप जैसे लोग जो है ना सुर में जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया होता है तो ये एक नेमत ही होती है
0: सिर्फ इसके लिए संभाल
1: सांप करनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा आपसे कि प्लीज प्लीज आप अपने इस फन को इस जनाब नेमत को आप दूसरों के हवाले करें और उनको भी पता चले वो भी महजूज हों और वो भी कुछ ना कुछ हासिल करें, खासतौर पर मैं अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ ज़ाती तौर पर। तो मज़ नाज़िन हमारा प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, एक डिफरेंस किस्म का प्रोग्राम था और हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लाया करें। तो शाह साहब को मैं इंशाल्लाह ताला गाय बगाय ज़हमत दिया करूँगा और हम ये चाहेंगे और चाहते हैं कि ये इस फन को ना हम सब के लिए पेश करते रहें गाय बगाय। शाह साहब आखिर में आप क्या समझते हैं कि म्यूज़िक इस वक्त पूरी दुनिया में डिफरेंट किस्म का अभी पेश हो रहा है जिसमें अगर मैं पाकिस्तान का कह लूँ या इंडिया का कह लूँ या बाकी बरसगीर में जिस तरह होता है, तो इसका क्या आप समझते हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या है, यानी ये चलता रहेगा इसी तरह लेकिन इसमें वो तब्दीलियाँ आती रहेंगी।
0: जफर साहब ये जैसे देख रहे हैं ना पांच उंगलियाँ एक जैसी नहीं है ना
1: जी जी,
0: अब हर बंदे का अपना शौक जोक होता है,
1: ठीक है
0: लोग क्लासिकल पसंद करते हैं
1: है।
0: ठुमरी क्लासिकल राग रंग
1: जी जी,
0: कुछ लोग गीत तक महदूद रह जाते हैं
1: ठीक है,
0: कुछ लोग कंपोजर बनना चाहते हैं कंपोज भी करना चाहते हैं, तो ये मुख्तलिफ समते हैं ना, लेकिन ये कि जो जो इंसान का शौक है उसमें वो अपना ईमानदारी से काम करता रहे तो इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि अगर उसको हौसला अफजाई मिलती रहे
1: जी जी
0: तो फिर ये चीज़ बढ़ती है।
1: अच्छा एक और ट्रेंड चला हुआ है काफ़ी अरसे से कि वो मैं देख भी रहा हूँ कि अभी लोगों ने ना जो जितने पुराने सीनियर लोग हैं ना म्यूज़िक के साथ जो तलक रखते हैं कंपोज़र हैं चाहे चाहे वो सिंगर हैं, उन्होंने ना एक ऑनलाइन सिलसिला शुरू किया हुआ है, वो लोगों को ना ऑनलाइन टीच करते हैं, तो इससे भी ज़ाहिर है उनका रोज़गार भी ज़ाहिर चलता होगा, अच्छी एक तरीका है। और दूसरा जो लोग सीखना चाहें या इससे कुछ हासिल करना चाहें तो वो भी करेंगे, तो आप क्या समझते हैं अगर आप अभी जैसे आपके पास टाइम अगर है तो उस तरीके से अगर कोई मैनेज अगर करके तो अगर आप एक वेबसाइट लॉन्च करें।
0: पहली बात तो यह है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ
1: मैं तो जो कुछ आपके पास
0: सीखने
1: है
0: वाला हूं।
1: जो कुछ आपके पास है वो तो
0: कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह
1: तो ये कि लोग
0: किसी का काम आ जाए तो बड़ी अच्छी
1: जी बात है। मैं यकीन करें जब भी बात आपका जिक्र होता है ना तो रजा साहब कुछ कहना चाहेंगे आप कह लें फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं क्योंकि आप जी
2: किसी ने कभी आपसे शागिर्दी करने की ख्वाहिश की?
0: टाइमिंग का इधर बड़ा फर्क होता है ना, अब जैसे मैं काम पे था तो पता है अगर कोई चाहता भी था तो मेरे पास काम की वो उसके पास वो टाइम नहीं था जो मेरे पास था ना, इस तरह तो कभी यानी इजहार तो बहुत करते हैं लेकिन ये होता है कि जो चीज़ हासिल करनी होती है ना वो बंदा को पता चल जाए, जिसको प्यास लगी होती है ना
1: वो खुद
0: बाकी आता है अपना
1: बिल्कुल
0: समझ
1: आए
0: उसको वो। अब मैंने एक सदास फैमिली से होकर मैंने राग रंग 80 रागों का मैंने यानी ये किया
1: अच्छा।
0: पहचान की बड़ी मुश्किल बात है ये
1: अच्छा।
0: यानी सुबह का राग और शाम का और इतने ये क्लासिकल है ना
1: अच्छा।
0: तो मैंने इसके लिए इतनी मुझे सख्तियां भी मैंने झेली बहुत बहुत वक्त, लेकिन मुझे शौक था मुझ में वो तशनगी थी कि मैं ये चीज हासिल करूँ मुझे पता चले। तो जिस तरह अगर इंसान कुछ पाना चाहे कोई हासिल करना चाहे तो वो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, नियत के ऊपर है सब।
1: अच्छा अच्छा चलते चलते ये भी मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि शाह साहब कोई भी कलाम आपके सामने पेश कोई कर रहा है या हो रहा है तो उसमें आपको पता चल जाता है कि ये किस राग में इसका क्या ठाठ या राग या क्या अंदाजा हो जाता है?
0: असल में अगर बंदा यूज्ड टू रहे ना
1: अच्छा
0: तो वो तो ईजी हो जाता है
1: अच्छा।
0: لیکن اگر بندہ ایک اس سے اب جیسے میری بڑی دوری ہے مجھے اچھا کچھ چیزیں میں اپنا کمپوزیشن بھی گاؤں گا مجھے خود نام نہیں یاد آ رہا ہوتا کہ اس راگ کا کیا نام
3: اچھا
0: راگ گا رہا ہوں لیکن نام بول گیا ہوں
3: اچھا اچھا
0: وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ جب اگر انسان اس میں رہے نا یعنی
1: جی جی
0: تھوڑا پریکٹس
1: چلیں شاہ صاحب آخر میں کچھ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کوئی فرمانا چاہیں پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں
0: بس اللہ پاک سب پہ رحم کرے اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے ہم پاکستانی ہیں پاکستان کے لیے دعا کیا کریں ہم پہلے سب سے مسلمان ہیں ہمیں اپنے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے
1: جی جی
0: جو ہمارے دین سے
1: مذہب پہ کوئی اثر ہو
0: اچھا کرنا چاہیے اچھا سوچنا چاہیے اور انشاءاللہ اللہ پاک بہت مہربانی کرے گا ہمیشہ امید رکھیں اچھے کی
1: تھینک یو بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب تو مزہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور امید کرتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی باتیں ہوئیں چاہے وہ انفرادی طور پر ہوئیں اجتماعی طور پر ہوئیں اس کو آپ اچھی اگر لگیں تو آپ اس کو فالو کریں اگر ناگوار گزریں تو اس کو بے شک اگنور کر دیں تو باقی یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھے پروگرام لائیں تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پاکستان زندہ باد اور ڈنمارک پائندہ باد